FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की आश्विन माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8

तपस्या से मनुष्य के सभी विकार शुद्ध हो जाते हैं। तप विकारों का नाश करता है। प्रतिदिन वेदाभ्यास, शक्ति के अनुसार पंच महायज्ञ और शांति धारण करना, ये कार्य महापातकियों के विकारों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से क्षण भर में ही लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि से सभी विकारों का नाश कर देता है।

राम के सामर्थ्य से ही सब कुछ होता है, मनुष्य से कुछ नहीं। वे राई से पर्वत कर देते हैं तथा पर्वत को राई में समाहित कर देते हैं।

माँ और माँ के भक्तों का बड़ा ही अटूट नाता है। भक्त जब भी माँ का स्मरण करते हैं तो माँ अपने भक्तों के तमाम दुख दूर करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 226।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्रीराम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में आज विशेष के साथ जानकारी दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन जन दिवस पर। साथ ही जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। प्रातः 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। प्रातः 9:50 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:05 पर कार्यक्रम महक पंजाबी प्रसारित किया जाएगा। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 12:00 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिंजरा। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर सुनेगा कुछ भजन। 5:30 का समय रहेगा युवा साथियों के कार्यक्रम युवा मंच का। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा क्रांतियां का। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा और 9:15 पर एक ही अभिनेता अभिनेत्री के क्रम में आज सुनिए अभिनेत्री आशा पारेख की फिल्मों के गीत। 9:30 पर कार्यक्रम रंगे गजल प्रसारित किया जाएगा और 10:00 आप सुनेंगे डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9:00, दोपहर 1:00, 5:00, 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार और 12:05, 5:05, 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ

0: वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि संबोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानां आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापन सूचकः भविष्यति। षड्विंशत्यधिक नवदश शततमे वर्षे संघलोक सेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्ति अवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमण्डलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् संबोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयं गृहीतः।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13.4, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमण्डलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35.1 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा, आंतरिक कर्णाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन 4 सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 21 रजत पदकानि तथा 39 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकः पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय 2 अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8 पराजितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग

0: लोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों और पुदुचेरी में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations

ही कार्यक्रम सुबह सुहानी के इस अंक के साथ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो श्रोताओं, रोजाना की ही तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आज के शुभ विचार के साथ। श्रोताओं, जीवन में सुख पाने का सबसे सरल तरीका है कम अपेक्षाएं और अधिक आभार। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। जब सोच सुंदर हो जाती है तब दुनिया भी सुंदर दिखाई देने लगती है। सूरज हर दिन बिना थके प्रकाश देता है, इसी तरह हमें भी बिना रुके अपने कर्म करते जाना चाहिए। और अब हमारा भी एक कर्म है जो आपके लिए लेकर आते हैं हम प्यारे प्यारे से गीत, तो आपका करेंगे मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, आपने ट्यून के है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको देंगे जानकारी आज के इतिहास के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, आज क्या कुछ घटित हुआ आज के दिन में, यानी 1 अक्टूबर के दिन। श्रोताओ, आज के दिन 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। 1 अक्टूबर 1919 में हंटर समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1919 को की गई थी। आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। एक अक्टूबर 2003 में नदियों को जोड़ने के संबंध में बांग्लादेश की आशंकाओं को भारत ने दूर किया था। आज ही के दिन 2001 में भारत के पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1842 में स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता एस सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म हुआ। 1 अक्टूबर 1919 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1975 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन का जन्म हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: वेट बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुभाष सुहानी और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस अथवा वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने एवं उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है। आज का वृद्ध समाज में अत्यधिक कुंठाग्रस्त है और सामान्यतः इस बात से सर्वाधिक दुखी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय ना लेना चाहता है और ना ही उनकी राय को महत्व ही देता है। इस प्रकार अपने समाज में एक तरह से निष्प्रयोजक समझे जाने के कारण हमारा वृद्ध समाज सर्वाधिक दुखी रहता है। वृद्ध समाज को इस दुख और संतरा से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की बहुत आवश्यकता है। श्रोताओं, आज ही के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी। श्रोताओं, भारत में हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है ताकि व्यक्ति के जीवन में रक्त की आवश्यकता और महत्व को साझा किया जा सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1 अक्टूबर 1975 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी द्वारा 1 अक्टूबर को की गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी की स्थापना श्रीमती के स्वरूप कृष्ण और डॉक्टर JP जॉली के नेतृत्व में 22 अक्टूबर को 1971 को हुई थी। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस पर। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कॉफी को एक पेय के रूप में बढ़ावा देने और मनाने का एक अवसर है जिसके लिए अब दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहली आधिकारिक तिथि 1 अक्टूबर 2015 थी जिस पर तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और इसे मिलान में लॉन्च किया गया था। इस दुनिया भर के कई देश साल भर अलग अलग तारीखों पर अपने अपने राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाते हैं। मार्च 2014 में ICO यानी अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया भर के कॉफी प्रेमियों के लिए एक ही दिन का उत्सव बनाने के लिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और अब समय हो रहा है समाचारों की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 सितंबर को फोन पर भारत अमेरिका संबंधों, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की। खनन मंत्रालय अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी करेगा। मंत्रालय ने कहा, भारत की अपतटीय क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और अगर मौसम की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम को संपन्न करने की अपने दोस्त अनुराधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुडबाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम शुभ प्रयाग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं शेर सिंह जरियाल की आवाज में गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं ये देश गान।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त

0: करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, UPSC के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DEAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज

0: संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: हमले के कारण दो मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
4: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
3: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग

0: की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A report.
5: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the

0: बस तुम रहते हो।
1: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
2: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
1: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
2: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: दीदी, नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो

0: ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
0: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: कार्यक्रम गाने सुहाने समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत, कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में फिल्म दिल है तुम्हारा से।

0: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
1: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जाँच और दवाइयाँ मुफ्त मिलती है।
0: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी में हमें किसी बड़ी खुशी की जरूरत नहीं होती, बस एक प्यारा सा गाना, थोड़ी सी तन्हाई और एक कप चाय काफी होती है।

0: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
1: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
0: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज ना करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ पानी को उबाल कर ही देना।
5: दादू पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
4: बेटा दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
6: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
7: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
1: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
2: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
3: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
4: यार, 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
5: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
6: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
5: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। श्रोताओं, कुछ गाने मौसम बदल देते हैं, कुछ गाने मूड बदल देते हैं, और कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जो हमें ही बदल देते हैं। किसी गीत में पहली मुलाकात छुपी होती तो किसी में बचपन की यादें, तो किसी में अपनों की मुस्कान। यही तो संगीत है, यादों को आवाज़ देने का सबसे खूबसूरत जरिया। तो चलिए आज फिर एक ऐसी ही सुरीली याद को आवाज़ देते हैं। सुनते हैं बेहद प्यारा सा नगमा।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने और ये रहा कार्यक्रम का आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाएं, आसान बनाएं, आर्थिक विकास को गति दें, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और

0: कालाधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी, जीएसटी परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
1: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में जीएसटी एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए जीएसटी परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए आईबीसी ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
0: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
2: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में यह राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस, इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहा है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज अ मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
3: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
4: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया है। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे लिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है, पुलिस का नाम आते ही छोड़ो इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है, क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कैसे होंगी। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से

0: रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है। इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
0: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक सीआरपीसी थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही बीपीआरडी इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं। और ये मेजरेबल काम है, ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए, 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जनविश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में के वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों को आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया। तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए। हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी ना किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
1: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई। और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
2: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
1: जी।
2: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ।
2: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी, क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था, दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो 4 कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और चौथा जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस से जुड़ा हुआ है। अब इन चारों कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन 4 कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन 4 कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे, वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
1: ये जो 4 लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो एनपीएज हैं।

0: ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूं, उसमें आईबीसी की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स में जाना पड़ता था, और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी, और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए, और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का, और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है, तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है, और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कि अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर, हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी, टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस

0: से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था, गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी, और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है, और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है, और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है, और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
1: बिल्कुल।
0: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं, जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है।
1: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप UPI पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
2: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक, सोशल इंक्लूजन। मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और UPI की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते हैं तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है, वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना, ये बहुत बड़ा बदलाव था
1: जी।
2: दूसरा, फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221.39 रुपया है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज़ 299 रुपीज़ क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा, इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने झंझट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहा है तो मैं क्यों करूँ, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
1: आए। और साथ ही एक चलते चलते, अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
2: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
1: जी,
2: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था?
1: यही था,
2: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या? अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है। और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। दो तीन प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के, जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
1: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:50 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबित ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 13 करोड़ से अधिक लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कोई संतुलित उपाय अपनाने का दिया सुझाव। और कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, अब तक नशा तस्करों की 5,46,00,000 रुपए की राशि जब्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के ऊर्जा हितों को मजबूत करने और लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में बहुउद्देशीय परियोजनाएं व ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना को प्रदेश सरकार के अधीन लेने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश हित में परियोजना की लागत की पहली किस्त का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने लुहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को SJVNL से अपने अधीन लेने के प्रयास तेज करने और पूह समदो व समदो काजा के बीच 66 KV ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रंगरिक की 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 1 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित बर्फबारी शुरू होने से पहले चालू करने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला जिला के रोहडू व रामपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री आज रोहडू स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और एंटी चिट्टा रैली में भाग लेंगे। इसके बाद वे चिड़गांव में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम के तहत भटवारी में ग्रामीणों, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों से सीधा संवाद करेंगे। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रामपुर के शिंगला में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उनका काशा में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद करने का कार्यक्रम है। 3 अक्टूबर को नोगली और रामपुर में जनसभा व विद्यार्थियों से संवाद के कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। नड्डा ने बताया कि भारत में वर्ष 1990 से 2023 के बीच मातृ मृत्यु दर में 86% की गिरावट दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों व संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इससे पूर्व जयराम ठाकुर ने केंद्रीय पर्यावरण व वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
2: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
1: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज ना करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। शीर्ष न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 5,46,00,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि नशे के कारोबारियों की संपत्तियों पर कार्रवाई के अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
4: जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 5,46,00,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। वहीं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 36 मामलों में प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं। नशे के कारोबार में संलिप्त 6 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। नूरपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई का बड़ा असर सामने आया है। यहां 17 मामलों में करीब 29,96,00,000 रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में नशा निवारण क्लबों को सक्रिय किया जा रहा है, जबकि रेडियो के माध्यम से भी युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नवरात्रों के दौरान प्रमुख मंदिरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश और स्लोगन प्रदर्शित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।

0: हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के 8 विभाग 1 महीने के भीतर जोलसप्पड़ कैंपस शिफ्ट होंगे। पहले चरण में सर्जरी, ऑर्थो, नेत्र और ईएनटी विभाग स्थानांतरित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिफ्टिंग की तैयारियां अंतिम चरण में है।
1: 8 साल से क्षेत्रीय अस्पताल परिसर से संचालित हो रहा मेडिकल कॉलेज अब अपने नए कैंपस जोधपुर में शिफ्ट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि शिफ्टिंग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और 1 माह के भीतर प्रथम चरण में 8 विभागों को नए परिसर में शिफ्ट किए जाने की उम्मीद है। प्रथम चरण में सर्जरी, ऑर्थो, नेत्र और ईएनटी विभाग जोधपुर शिफ्ट किए जाएंगे। रेडियोग्राफी और एनेस्थीसिया की सेवाएं हमीरपुर और जोधपुर दोनों स्थानों पर संचालित होंगी। वहीं नए अकादमिक ब्लॉक में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। इससे नए परिसर में शैक्षणिक और चिकित्सा सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का रास्ता साफ होगा। नए कैंपस में 3 टेस्ला MRI मशीन भी स्थापित हो चुकी है। अस्पताल संचालन से जुड़ी अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, अनुबंध प्रवक्ताओं से होगी अतिरिक्त भत्तों की रिकवरी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को जारी किए रिकवरी आदेश। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, धौलासिद्ध प्रोजेक्ट सरकार के अधीन लेने के लिए कोर्ट में दाखिल होगा शपथ पत्र। दिव्य हिमाचल ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को शीर्षक दिया है, भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए भू अधिग्रहण को जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, बिना कारण अधिग्रहण की समय सीमा बढ़ाना गलत, हाईकोर्ट ने 4 अधिसूचनाएं की रद्द। दैनिक जागरण की एक खबर है, श्रम व रोजगार विभाग में कार्यरत 160 आउटसोर्स कर्मचारियों का काम पर न आने के निर्देश। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, शिमला व धर्मशाला देश के 50 प्रतिष्ठित प्रगति शहरों में शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबित ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 13 करोड़ से अधिक लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से किया इंकार, कोई संतुलित उपाय अपनाने का दिया सुझाव। और कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई जारी, अब तक नशा तस्करों की 5,86,00,000 रुपए की राशि जब्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 PM। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां।

समय से महंगी होती हैं भावनाएं, जो इन्हें समझ सके बस उन्हें पर हमें इन्हें खर्च करना चाहिए। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गीतों का कारवां लेकर मैं पवन शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम में हमारा और आपका ये साथ बना रहेगा अब से लेकर पूरे 10:30 तक।

तो हमारी रोज की दिनचर्या जुड़ी होती है भाग दौड़ के साथ, लेकिन इस भाग दौड़ में जोश भरता है गीत संगीत, जो हमारी सारी थकान को पल में छूमंतर कर देता है। रेडियो पर कुछ मस्ती भरे गीत चल रहे हों तो हमारे साथ क्या होता है, हाथ पैर हिलने डुलने लगते हैं संगीत के तरानों के साथ। और आपकी अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त आपने ट्यून किया, और इस समय कुछ ऐसे ही तराने हम आपके लिए बजा रहे हैं।

शो तो हर दिन कुछ अलग ही दास्तान बयां करता है। क्या नया हमें करना है, क्या कुछ जीवन में परिवर्तन करना है, क्या चेंजेस हमें लाने हैं, कुछ ऐसा करें कि हर दिन आसानी से गुजरे और दिमाग में भी कोई टेंशन कोई चिंता ना रहे। इसके लिए सबसे अच्छा मूल मंत्र है बस अपनी अच्छी सी कोशिशें जारी रखें, लेकिन अपने मानसिक शांति को भी हमें बनाए रखना है। और ये शांति हमें मिलती है संगीत सुनने से।

हर रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं। कुछ नया करने के लिए ये सीख हमें एक छोटे बच्चे से भी मिलती है, या फिर हम नेचर की बात करें तो प्रकृति की बात अगर हम करते हैं तो अपने हर अंदाज में हर रोज़ हमें कुछ नया सिखा कर वो जाती है। हमारा मूड भी नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करता है। जब रिमझिम बारिश होती है तो कुछ ऐसे ही मदमस्त, कुछ ऐसे ही भीगे भीगे तराने सुनने का मन करता है, और जब मौसम सुहावना लगता है तो दिल और दिमाग को तरोताज़ा करने वाला गीत संगीत हम सुनते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही गीतों से हम आज आपको रूबरू करवा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी है वही जानी पहचानी 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

इश्क फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गीतों का कारवां कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

पहाड़ों के सुर कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोक संगीत हम आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम का पहला लोकगीत सहगान के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं।

हिमाचली गीतों और लोक संगीत से सजा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए अगला लोकगीत ज्वाला प्रसाद की आवाज़ में।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए सूरज सिंह को।

0: अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला जिला के रोहडू व रामपुर उपमंडल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री आज रोहडू स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और एंटी चिट्टा रैली में भाग लेंगे। इसके बाद वे चिड़गांव में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम के तहत भटवारी में ग्रामीणों, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों से सीधा संवाद करेंगे। 2 व 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रामपुर उपमंडल में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों व संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इससे पूर्व जयराम ठाकुर ने केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इसका उद्देश्य समाज में वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके अमूल्य अनुभवों और योगदान को सम्मान देना है। प्रदेश में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर वरिष्ठ नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, संस्कार और उनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए अनमोल है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। शीर्ष न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख

0: बनाया है। जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 5,46,00,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि नशे के कारोबारियों की संपत्तियों पर कार्रवाई के अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
1: जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 5,46,00,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। वहीं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 38 मामलों में प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं। नशे के कारोबार में संलिप्त 6 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। नूरपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई का बड़ा असर सामने आया है। यहाँ 17 मामलों में करीब 29,96,00,000 रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में नशा निवारण क्लबों को सक्रिय किया जा रहा है, जबकि रेडियो के माध्यम से भी युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नवरात्रों के दौरान प्रमुख मंदिरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश और स्लोगन प्रदर्शित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: शिमला स्थित छावनी बोर्ड द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज जतोब व इसके आसपास के इलाकों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामूहिक श्रमदान व जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छ परिसर, स्वस्थ समाज और समृद्ध भारत की परिकल्पना को मजबूत करना है। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने छावनी बोर्ड कार्यालय से 3 स्वच्छता टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्वच्छ छावनी, हरित छावनी और स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है के संदेश के साथ लोगों से स्वच्छता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महक पंजाब दी। महक पंजाब दी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की आवाज़ में गाया ये दो गाना अभी आपने सुना। और अब अगला पंजाबी गीत आप सुनेंगे जस मानक की आवाज़ में।

महक पंजाबी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए दिलजीत दोसांझ को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाबी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
1: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
2: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
2: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः 4th बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
1: तो पहली बात,
2: संकट में घबराएं नहीं।
1: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी,
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी।

0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी।
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा।
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: दाना चुनकर लाती चींटी।
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: सचमुच कैसी कलाकार है।
0: घर को खूब सजाती चींटी,
1: घर को खूब सजाती चींटी।
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे।
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे।
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी।
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर।
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती।
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की।
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं, अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
7: प्लीज मेघा,
6: दिखा दो।
4: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
8: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
9: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
10: बहुत अच्छी
11: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
12: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
12: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
12: जी
4: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
4: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
12: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
4: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
12: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
4: सैनिकों के बारे में?
12: सैनिकों के बारे में है।
4: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
12: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
12: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
11: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
12: कितनी बहादुर है हमारे सैनिक।
4: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
13: मुझे भी।
14: इसके बाद में?
4: नहीं पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
12: हाँ हाँ हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
4: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
4: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
12: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
12: जी मैडम।
10: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
12: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
12: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
4: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
12: बताती हूँ बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
12: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
12: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
4: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
12: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
13: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
13: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए। कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
13: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
12: जी मैडम।
3: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
14: बहुत वीरता, बहुत ही वीरता का काम।
4: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
8: काश काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
11: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
15: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
10: नमस्ते सर।
16: नमस्ते बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
12: जी मैडम।
16: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
12: धन्यवाद सर।
15: धन्यवाद सर।
16: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
12: धन्यवाद सर।
16: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
12: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
16: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
16: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
10: एक हिंदुस्तान।
16: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
17: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
16: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
18: शाबाश जांबाजू, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये काम करो। फायर फायर।
16: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
18: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन

0: नहीं छोड़ी है, हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
1: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
0: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
1: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही दो लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
0: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर!
1: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
0: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना नहीं पाए, आगे बढ़ो, फायर!
1: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
0: बाला सिंह, मैं तुम्हारी वैसे भरता हूँ। Keep on firing! छोड़ना नहीं मोर्चा, कोई यहाँ से निकलेगा नहीं। हम एक-एक को मार के छोड़ेंगे। Keep on firing!
1: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भर आया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई। लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
2: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
1: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
3: यस सर, शाबाश।
2: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
1: नंदिनी जी,
2: जी
1: मैं आपका और खास तौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
2: जी,
1: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
3: यस सर।
1: अच्छा अब मैं चलता हूं
2: जी।
1: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
3: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं और अब समय है फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म शक्ति का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गीत किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म सीता और गीता का ये गीत आशा भोंसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मनचली का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए आशा भोंसले, शैलेंद्र सिंह और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म सुहाग का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा।

0: मिंजरा कार्यक्रम सुनने वाली साड़ी सारे श्रोता सखियां दा स्वागत तुहाडे अपने कार्यक्रम में विच कने अज है वीरवार कने अज दे कार्यक्रम में विच अज तुहांजो लाइव फोन इन प्रोग्राम हां सुनवाना है कने साड़े प्रोग्राम में दी खास गल ए है कि ए प्रोग्राम साड़ा सिर्फ कन सिर्फ साड़ी श्रोता सखियां वास्ते ही है सही से सिर्फ इस प्रोग्राम में कॉल करी सकदी हैं कने साड़े स्टूडियो च कॉल करने वास्ते तिना जो मिलाना है साड़े स्टूडियोज दा टेलीफोन नंबर कने ए नंबर है 01892224391 कने बड़े सारे लोक कलाकार अज दे कार्यक्रम विच अहां शामिल कीते होए न जिन लोक कलाकारां दे गीत तुहां सुनी सकदे हैं कने स्टूडियो च कॉल करने ताएं तुहां एक बारी फिर नंबर नोट कर लिया 01892224391 कने जिहड़े लोक कलाकार अज दे प्रोग्रामे विच अहां शामिल कीते होए न उहनां दे नां भी तुहानूं दसी दईए साढ़े वाल अज दे लोक कलाकार हैं अचर सिंह परमार अंकुश संदल बिमला देवी करनैल राणा मान सिंह नसीम बाला निमू चौधरी पवन डोगरा प्रोमिला ठाकुर ऋषि कुमार कने सुनील राणा कने साड़ी श्रोता सखियां जो शायद पता नहीं होना कि अज लाइव फोन इन प्रोग्राम वीरवारे जो होंदा है कने जल्दी ते अहां ये उम्मीद करनी है कि साड़ी सखियां सांजो कॉल करन कने अपनी पसंद दा लोक गीत इस प्रोग्रामे विच सुन कने हुण फिलहाल जल्दी तक साड़ी कोई श्रोता सखी साड़े ने जुड़दी है एक प्यारा दिया लोक गीत अहां सुनवाना है लेकिन एक सखी शायद साड़े तक पूजी गई है हैलो
1: नमस्ते जी मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से करनैल राणा का कोई भी गीत सुनवा दीजिए
0: करनैल राणा दा गाना तुहानू सुनवाना ज्योत्सना जी कने दसा तुहाडे पठानकोट च क्या क्या चल रहा अजकल
1: आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और नवरात्रों की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे एक लोकल है आशा पूर्णी मंदिर वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है बहुत पुराना टाउन है वहाँ पे अंदर इतनी संकरी गली है कि अगर रिपेयर करने हैं पुराने घर तो वो डोंकी खोतों के ऊपर सीमेंट के बोरे रख के ले जाते हैं गाड़ी अंदर नहीं जाती और पत्थर की गलियां हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: आशा पूर्णी मंदिर बहुत सुंदर है और
0: जी,
1: एक बड़ा
0: आशा पूर्णी मंदिर जेड़ा है से साड़ी सारे दी मुरादा आशाएं जड़ी होंदियां लोकां उम्मीदा रखी होंदियां ना तिना जो पूरी करदा है कने तुहां गल कीती श्राद्धां दी ता श्राद्ध जिस जहां पितृ तर्पण करा दे ना कने जी अपने पूर्वजां जो हां इस दिन याद करदे कने सारे जड़े जड़े हां 16 श्राद्ध मनांदे न जरूरी नहीं है कि हां सिर्फ इन दिनां च ही उन्हां जो याद करिए संजो जड़े साड़े घरे बुजुर्ग बैठे हो अगर तिना दी सेवा अज हां तिना दे जिंदे जी भी करी लैन तां श्राद्धां च अगर हां बड़े बड़े 56 भोग अगर लोकां जो खवांदे तां तिना दा कोई फायदा नहीं तुहां बंदे इस गल जो
1: बिल्कुल
0: जी कने बड़े सारे लोग दिखा अजकल जड़े वृद्धाश्रम हैं से बढ़ा दे किया बढ़ा दे से यही कारण है कि बच्चे जड़े अपने माँ प्यो ने प्यार नहीं करते है ना कने जड़े माँ प्यो जड़े अपने बच्चियां जो दिन रात पाली के कने अपना सारा पैसा खर्च करके तिना जवान करते हैं एक समय ऐसा आंदा कि तिना जो अपने माता पिता ही बोझ लगना लग जाते है ना कने बड़ा अफसोस होंदा जलू हाँ बड़े सारे टीवी च दिखदे या फिर हाँ जलू फेसबुक खोल दे इंस्टाग्राम कने देतियां रीला दिखदे कि माता पिता जड़े रोवा दे ना अपने बच्चे ताएं उन्हां दा इंतजार करा दे कि कलू तिना दे बच्चियां आना तिना दा दुख दर्द मिटाना तो ये बड़ा कम समय तिना वल होंदा जियां 70 दे जलू पूजी आंदे तो बच्चियां जो भी थोड़ा जिहा सोचना चाहिए कि साढ़े माता पिता सानू ताएं क्या क्या कीता कने तिना ताएं अहां क्या करना एक उम्र ते बाद ना तिना दा बचपन शुरू हो जांदा हटी के है ना जी कने करनैल राणा जी दा गाना तुहानू जरूर सुनवाना प्रोग्राम च तुहां कॉल कीते बहुत बहुत धन्यवाद
1: और आपको नया प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा कने धन्यवाद
1: थैंक यू

जी साड़ी बाकी श्रोता सखियां भी इस प्रोग्राम में सांझो कॉल कर सकती हैं ना, नंबर सही है 01892224391। कने बड़े सारे लोग कलाकार आज दे प्रोग्राम में विच हाँ शामिल कीते हो ना, एक बारी इना दे ना हाँ तो आंजो फिर ही दसी देने। ये ना हैं अचर सिंह परमार, अंकुश संदल, बिमला देवी, मान सिंह, नसीम बाला, निमू चौधरी, पवन डोगरा, प्रोमिला ठाकुर, ऋषि कुमार, कने सुनील राणा।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, नाम दस्सो अपना। साक्षी जी स्वागत थोड़ा, कन्ने मिंजरा प्रोग्राम सुना दे तू? हाँ
1: हाँ जी सुना दे मैडम जी, ऐसे सारे प्रोग्राम सुनने न
0: जी। बड़ी अच्छी गल है, कन्ने आज दस्सा कुछ लोक कलाकार दा गाना तू हाँ सुनना? निम्मो चौधरी दा गाना सुनाना साक्षी।
1: तुम ठीक हो?
0: हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल बढ़िया है ना। कितना बनया है ना साक्षी।
1: हाँ जी बहुत ज्यादा बनया है मैडम जी, तो मैं ना भगवान प्रार्थना करने की बनी रहा
0: जी। बिल्कुल हाँ, भी ये चाहते साड़ा साड़े श्रोता ने प्यार जड़ा है इंया ही दिन दुगना रात चुगना बढ़ता रहे। कने
1: मेरे कने पता क्यों है? हाँ मैं इन बड़ी देर ये फोन ना है, पता के एक बार ना मैं छोटा फोन आ रखा ना, फिर मैं लगाने हैं दूसरे गाने ना, तो बटन मेरा ना रेडिया डाल तो वो ही आ मैं कहता, जो तू पता भी नहीं के रेडिया लगता फोन ने कने रेडिया बटन तो वो ही आ कने
0: चलो बड़ी अच्छी गल है, कने तुह इस ते जानकारियां भी लेंदे होने, तो जो ज्ञान भी आंदा होना, समाचार भी सुनदे तुह साक्षी।
1: हां जी मैं सब कुछ सुननी है मैडम जी।
0: जी बड़ी अच्छी गल है, कने हुन तो जो
1: पंजाबी आज पंजाबी गाने भी लगे है ना, पंजाबी गीत ओ भी सुने मैं।
0: चलो अच्छी गल है, हुन तो जो गाना सुनाना निम्मो चौधरी दा प्रोग्राम च तुह कॉल कीते, बड़ा बड़ा धन्यवाद।

साड़ी श्रोता सखियां भी इस प्रोग्राम में कॉल करी सकदियां न। नंबर है 0189224391। कने प्रोग्राम दा नां है मिंजर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी, कौन बोला दे?
1: मैं पठे। नमस्ते जी, पहले तो नमस्ते बोले लेंदे तुम तो।
0: जी बोला जी।
1: मैं मधु बोला जी, पठियारे से।
0: ना फिर दसी दिया
1: मैं मधु पठियारे से बोला
0: जी।
1: जी।
0: मधु स्वागत थोड़ा प्रोग्राम में। कने दसा कुछ लोक कलाकार दा गाना तुहां सुनना अज प्रोग्राम में विच।
1: मुझे नसीब वाला सुनाई जी।
0: जी नसीम बाला दा गाना तुहां जो सुनाना। मधु क्या कर दे तुहां?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: जी
1: मैं
0: तो
1: कितनी,
0: जड़ी हाउस वाइफ होनी ना से तो बड़ी व्यस्त होनी दे नाल तो समय नहीं होंदा है ना।
1: पता मैं कितनी बजे को 6-7 बजे कौन मनाई ना, बिजी जाए बिजी जाए,
0: पर
1: पर क्या
0: दिखा
1: करते
0: बोलते
1: हैं
0: ना जिन्नी
1: बाहर।
0: दिले ने मिलाया तिना दा फोन जरूर लगना। कन्ने जालू बोलते दिले जो दिले दी राह मिलती ना तो कुछ तो
1: हाँ,
0: अच्छा होंदा है ना।
1: जा किचन के रखे ना, मैं एफएम में अपना तो
0: हाँ जी।
1: मैं तो अरे बड़े मतलब एफएम जेड़ा मेरा ना रेडियो बिची है ना, करने सारी शॉप है करने। हाँ,
0: जी
1: सर्विस डोर से रखे ना,
0: जी जी
1: तो पास आवाज से आवाज चली जाती किचन से भी करने दुकान में भी।
0: चला वधिया है कि तो हाँ आपू भी जड़ा मनोरंजन तो हाँ लेंदे आकाशवाणी धर्मशाला ते कने लोकां जो भी सुनांदे साढ़े प्रोग्राम है ना
1: हाँ जी, हाँ
0: जी।
1: जी।
0: ता थोड़ी दिनचर्या क्या रहंदी है?
1: दिनचर्या ये सवेरे उठना, गरम पानी पीना, फिर उसके बाद अपना होर व्यायाम वगैरह करना। थोड़ा अंगने भी दो साफ सजाई नहीं होता क्योंकि मेरे जेड़े घुटन रिप्लेसमेंट हुई दुनिया भी।
0: जी। तो योगा करना बड़ा ज़रूरी है शरीर जो फिट करने ता है ना
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: जी।
1: हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद साफ पानी करा, फिर बस में टाइम में पता नहीं चलता, फिर नवा तो हुआ अपना पूजा पाठ
0: तो खेती
1: करा।
0: बाड़ी भी लाइए तू? हाँ
1: नहीं खेती बाड़ी नहीं करते मैडम जी,
0: जी।
1: नहीं
0: तो आजकल बरसात खत्म होने वाली है ता थोड़ा बहुत तो तुम भी कोई साग सब्जी लाई होनी है
1: जी। लाड़ू सुड़ू जी आम होंगे थोड़े बहुत
0: जी। तो
1: आलू
0: आजकल
1: टमाटर
0: जानदी बहारा दी क्या क्या सब्जियां थोड़े हाल लगी हैं?
1: भिंडियां लगी हैं, जानदी बाहर आई हैं, करेले लगी हो,
0: जी
1: दानियां लग रही हैं।
0: कने कचालू भी पाया तो? हाँ
1: कचालू तो तुझे पता है इस पास हूँ ओबड़ चली पी हो ना,
0: जी
1: बायो
0: जी
1: तो है ना, तो हाँ बायो ना, कचालू भी वही समझा खाने में गुजारा।
0: जी तो पतोड़े बना दे,
1: हाँ जी, बना दे पसो।
0: खट्टी भुज्जी भी बनती आजकल।
1: हाँ
0: जालू
1: जी,
0: जालू हाँ इना कचालू पुट दे ता उदे नीचे जड़ा निकल दिया तिसते नीचे छोटे छोटे कचालू निकल दे तीने पत्ते कने डंडिया जालू छिली के पान दे कुकरे च ता फिर जालू ना कोटी के बना दे खट्टा लाई के ता खट्टी भुज्जी बड़ी स्वाद लगती पत्ते ने बड़ी स्वाद लगती फुलके ने स्वाद लगती है ना
1: तो मैडम जी मुझे पानी आई गया था।
0: कने बड़ा सारा दिखा साढ़े आस पास साढ़े खेतों से इतनी चीज़ा आंदियां ना कि बाजार सानू जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े भी तुहां सब्जियां लाई हैं ना जालू बरसात खरी तेज़ पौंदी तालू तुहां तिना पत्तियां दा पतोड़े बनांदे पत्तियां दा साग बनांदे कने इस अलावा जालू से खत्म होने का समय होंदा तां से सानू अरबी जिना हाँ गंडियाली गलांदे है ना तां से गंडियालियां सानू मिली जांदियां पर जालू गंडियालियां ते पूरी तरह तैयार नहीं भी होई होनियां तां हाँ खट्टी भुज्जी भी बनांदे तिना दी डंडियां दी तिना पत्ते दी तिना दी जड़ां छिले छुले के जालू कुकरे च घोट दे है ना।
1: हाँ जी, फिर दो गल कांदुर भी लगता फिर ही।
0: जी जी जी जी बहुत बढ़िया गल दसा दे तुहां। कने बाकी कदी कद्दूआं दे फुल्लां दे तुहां पकौड़े बनाए?
1: हाँ जी, बनाए बड़े टेस्टी बनते मैडम जी,
0: जी
1: टेस्टी।
0: कने जालू बच्चे बड़े नखरे करते ना कि ए नहीं खाना वो नहीं खाना ता दो चार कद्दूआं दे फुल तोड़ा तुहां तिस च बेसन ला कने तवे पर तुहां तिशियो जियां अंडा बना देतियां तुहां कच्चा
1: बड़े
0: पका बना कने फिर तुहां तिशियो फुलके ने घ्योल चोपड़े फुलके ने खा ता तेदा मजा ही अलग होंदा है ना
1: क्या मजा आ जाता खाना तो।
0: जी
1: चल बच्चे हाड़े बड़े हो गए, वे बारी दिस्ते होना है रहन दे दो जने घर। हां
0: लेकिन जेड़े साढ़े देसी स्वाद है ना से साढ़े जिब्बे ते छूटते नहीं है ना।
1: नानी छोड़ दे जी, खाने
0: जी
1: अंदे ही।
0: चलो तुहानू हुण आहा नसीम बाला होरां दा गाना सुनवाना कन्ने प्रोग्राम च तुहां कॉल कीते बड़ा बड़ा धन्यवाद।

साढ़े श्रोता सखियां दा प्रोग्राम मिंजरां तुहां सुना दे कन्ने इस प्रोग्राम दा हिस्सा अगर श्रोता सखियां बनना चाहुंदियां न तां सै जल्दी ते फोन मिलान कन्ने सांझो कुछ नंबर पर डायल करना। ये नंबर है 01892224391। कन्ने बड़े सारे लोक कलाकार अज दे प्रोग्राम विच हां रखे होने। इन लोक कलाकारां विच दे नां हां तुहानू दसणे जिन्हां दे गीत तुहां इस प्रोग्राम विच सुनी सकदे हन। कन्ने लोक कलाकार हुण साढ़े वाल हैं अचर सिंह परमार, अंकुश संदल, बिमला देवी, मान सिंह, नसीम बाला, पवन डोगरा, प्रोमिला ठाकुर, ऋषि कुमार, कन्ने सुनील राणा।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: जी, तो अंजुदा से दे है कि ये प्रोग्राम सिर्फ कने सिर्फ साढ़े महिला श्रोता सखियां वास्ते है न। इस पुरुष सांझो कॉल नहीं करी सकते हैं, कने साड़ी सखियां सांझो कॉल करी सकती हैं। 01892224391 ये साड़ी स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्ते जी, ना दसा तू हाँ कौन बोला दे?
1: मैं स्टडी से बोला दी, सुनीता
0: सरिता।
1: सुनीता
0: सुनीता
1: सुनीता
0: जी, दसा तू हाँ गाना कौन जिया सुनना?
1: मान सिंह और सुनाई दिया।
0: मान सिंह जा गाना तो अंजे सुनाना। क्या कर दे तू हाँ सुनीता जी?
1: मैं रिटायर्ड हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट से।
0: जी, तो हूँ तू हाँ क्या क्या करा दे करे भाई के?
1: मैं काम से फ्री हुई हूँ, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा दी, करने करने थोड़ा प्रोग्राम सुना दी।
0: तो थोड़ा आवाज़ से भी लगा था तू हाँ सुस्ता दे थोड़ा। हूँ
1: नहीं,
0: रिटायरमेंट के बाद थोड़ा आनंद लिया दे अपने जीवन का, है ना?
1: आनंद तो ले रहे, पर काम पूरा सही भी यही है दीदी, अंदर से
0: जी, तो जड़ी साड़ियाँ जड़ियाँ महिलाओं होंगे ना जी, जनानियाँ होंगी, तिना का काम तो कदी मुकदा नहीं, कने काम तो चली रहें, कने बोलते शरीर जड़ा है चलाई रखना चाहिए, है ना? मशीन होंगी ना, बोलते मशीन रुकी आए तो तुझे जंग लगी आता, तेल देना पौंदा, है ना?
1: जंग ही लगना मैडम
0: हाँ
1: जी।
0: जी, तो इस उम्र च तो जितना चुस्ती फुर्ती यहाँ बनाई रख गए उतना ही बढ़िया होंदा, शरीर चले रहे।
1: सही है,
0: हाँ जी, तो साड़ी पाचन शक्ति भी बड़ी बढ़िया हुई जाती जालू हाँ अपना शरीर चलाई रख दे, है ना?
1: बच्चे सिरे निकल जाते, कहने हाँ फिर करेगा
0: जी, तो क्या क्या काम कार लाए आजकल तो? हाँ,
1: बस
0: बरसात
1: जी,
0: खत्म हुआ दी कने हूँ सर्दियां दा
1: साफ
0: थोड़ा
1: सफाइया दा
0: आगमन
1: काम,
0: हुआ दा। हाँ जी।
1: साफ सफाई, हुण किचन साफ कर लेने, हुण कपड़े सुखाई लेने, यही दे काम होंदे ने हुण गृहस्थ आश्रम च। तो सर्दियां दे कपड़े
0: सर्दियां दे कपड़े कढ़ने कने से सुकाने
1: सुखाने
0: कने गर्मियां दे चुकने हैं
1: और क्या ही काम ने
0: ना?
1: सारे
0: जी, तो जेडे पुराने जमाने दे जेडे बुजुर्ग होंदे थे, हूँ तो हाँ फिनाइल दी गोलियां पांदे या कुछ इयां करदे अपने कपड़े जो सहेजने ताएं कि उस चे सिल्वर फिश लगी आंदी, है ना? जिसे टोक बोलते हाँ, टोक लगी आंदी कपड़ियां च, जेडे गर्म कपड़े होंदे, गर्म ऊनी कपड़े कोट होंदे या कुछ इस तरह दे। तो पहले तो जमाना होंदा था जलू साढ़े बुजुर्गों वाल दे दियां चीज़ां नहीं होंदियां थी, तो से नीम दे पत्ते या फिर बड़ी सारी जड़ी बूटियां होंदियां हैं,
1: लौंग वगैरह पाते पाए लेंदे है ना, लौंग भी पाते थे,
0: लौंग पांदे थे,
1: हिंग पाते
0: फिर
1: थे मैडम जी, हिंग कने भी नहीं लगता थी।
0: जी कने इन्हां ने क्या होंदा सा कीड़ू मकोड़ू जड़ा साढ़े कपड़ियां च भी नहीं होंदा, कने ईवन जड़ी बोलदे हाँ फफूंद भी नहीं लगदी इन्हां चीज़ां च ना।
1: बिल्कुल भी नहीं लगती थी
0: हाँ
1: इन
0: जी,
1: चीजों
0: कने जड़े
1: कने।
0: साढ़े खाने पीने दे जड़े पेड़ू होंदे है ना, जिन्हां च हाँ चौल कने आटा रखदे है, तो तिन्हां च भी जी हुण तां बड़ी चीज़ां चली पईआं
1: पत्ते
0: बाजार। हाँ
1: पुदीना
0: जी,
1: पाते हैं जिसे।
0: कने तिस च नीम दे पत्ते कने बड़ी सारी चीज़ां रखी होंदी हैं, हुण तिन्हां दे नाम इंजो याद नहीं होआ दे।
1: फर्बल है ना जी, ये कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं है इसके,
0: जी, कने
1: साइड
0: बोलिया
1: इफेक्ट
0: जड़ी
1: नहीं।
0: कड़वी नीम होंदी ना से पतासे वंडदी, है ना? जिन्नी
1: हाँ
0: कड़वी
1: बस
0: होंदी मुँह च कड़वा तो लगदा, पर जेड़े उदे स्वाद कने उदे फायदे हैं ना
1: स्वाद
0: से
1: कने पता
0: बहुत
1: नहीं
0: अच्छे
1: चलता।
0: होंदे, कने डायबिटीज़
1: हाँ
0: वाले वास्ते तो नीम बहुत
1: अच्छी है
0: ही
1: ना नीम। हाँ जी
0: बड़ी अच्छी चीज़ होंदी, कने सांझो अपने आसपास दे दे पौधे जरूर लाना चाहंदे चाहिए
1: इतना
0: कने
1: ही होया काफी, पर बंदर नहीं छड़ा देता, इतनी चमरख लगी इस वरी मैडम जी, पर हाँ एक दाना नहीं चखी सकते
0: जी, तो चमरका च तो हाँ चमरका का क्या क्या बनाते हैं? चमरका तो बड़े स्वाद होंगे, वाइटामिन सी दे पूरे स्रोत
1: हाँ
0: होंगे।
1: जी, तो सिटी फ्रूट है ना, तो डेली एक खाई ले, ये ता अच्छा हुंदा है, ता इधे खटिया सुखा अचार बना तो था,
0: जी, तो हाँ
1: तो
0: चार भी
1: मजे
0: बनाते
1: ये भी था, ता छड़े नहीं बंदरा ने ता
0: जी, तो थानजो भी दसी दिया कि चार की बनाते तो हम।
1: जी, तो बस नहीं कट्टी के इधर बीज बीच से निकाल देना, सारी दी कट्टी के नमक मिर्च मसाला पाई की थी, मतलब
0: जी
1: अचार अंबा ना पांदे,
0: जी
1: फिर इतनी
0: चमरक
1: अंबा दिया खटिया सुखा देना,
0: जी
1: फिर इन्हें मिक्स
0: चमरक दी
1: करना,
0: चटनी भी बड़ी स्वाद बनती है, थोड़ा देर तो हाँ गर्म पानी
1: कढ़ाई
0: च तुसी तो
1: कढ़ाई
0: हाँ
1: नहीं
0: बॉईल कर
1: मैडम
0: लिया,
1: जी,
0: कने
1: रस
0: उसके बाद
1: हाँ
0: पत्थरे दे कुंडे च जल तुसी पीसना ना, हरी मिर्चा पाई के कने
1: मैडम
0: पुदीना
1: बड़ी
0: पाई के
1: अच्छी
0: कुटना
1: लगी,
0: से, कने थोड़ा देर लसन दा एक दो गुलियां पाई लेनी है, कने उसके बाद चमरक दी चटनी
1: बड़ा ही
0: दा
1: मजा
0: स्वाद।
1: आने चाल
0: हाँ
1: कड़ैमा
0: जी,
1: जी दाल के ने बड़ी स्वाद लगती मैडम जी।
0: बच्चे जड़े हैं ना जिन्हों जड़े अगले बच्चे हैं तिना पता भी नहीं है चमर क्या चीज़ है, स्टार फ्रूट बोला था सिना पता लगता कि स्टार फ्रूट भी कोई चीज़ है
1: ता
0: ना?
1: बड़े खुश होते हैं स्टार फ्रूट करे,
0: हाँ,
1: चमरक
0: कने
1: खाई
0: चमरक
1: ना।
0: बोलना तो ये क्या है ना, ये शब्द शब्द ये बोल दे बच्चे ना।
1: हाँ जी
0: ता चला थोड़े ने गल करके बड़ा अच्छा लग्या, कने प्रोग्राम में तुहां कॉल कित्या तुहां गाना मान सिंह और सुनना दसों तो
1: हाँ
0: अंज
1: जी
0: सुनाना, प्रोग्राम में कॉल की तुहां, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।

अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखें कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखू यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और

30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
2: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
3: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
2: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
4: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: Today we have Dr. Neha Sharma, aesthetician and cosmetologist, National Skin Aesthetic Clinic, Palampur, to speak on pruritus or urticaria. Doctor, when should a person consult a doctor for pruritus or urticaria instead of using home remedies?
6: Home remedies such as moisturizers and regularly using any emollients, avoiding any known irritants, keeping showers lukewarm and using cool compresses are reasonable for mild or short-lived itching, but medical consultation is appropriate when itching is very severe and persistent. There is a widespread or unexplained rash, then hives keep recurring for long-lasting, and symptoms began after using any new medicine, and itching is accompanied by symptoms such as unexplained weight loss, fever, sweat, night sweats, etc. So seek emergency care immediately for hives, itching accompanied by swelling of lips, tongue or throat. So difficulty in breathing and swallowing needs medical assistance.
5: Issued in public interest by Jagsonpal Pharmaceuticals Limited.
7: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
8: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
7: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

कल आज और कल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ तक कि आपने तो सारे जवाब हमें दिए हैं कि किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ है और शैली शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। यहाँ तक कि आपने ये भी लिख भेजा कि रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और बबीता इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के युवकों को हम 60 प्लस वालों के विचार अच्छे नहीं लगते, ना ही उन्हें हमारी सलाह उनके मन को भाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर इस दिन शुभकामनाएं सिर्फ ना दें बल्कि अपने वरिष्ठों को समय दें, उनकी बातें सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि किसी घर में बुजुर्गों की मौजूदगी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि उस घर की स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वादों की छांव होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ करना चाहते पर देखो ना, जैसा पहले दौड़ते थे अब नहीं दौड़ पाते, और हाँ रस्सी भी तो नहीं कूद पाते, पर जो नहीं कर पाते वो क्यों सोचें, जो कर पाते हैं क्यों ना उससे खुश हों। तो हम वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घर के सभी काम कर लेते हैं, अगर सहायिका ना आए तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। वैसे अब हम वरिष्ठ नहीं हैं अभी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं याददाश्त के बारे में, यानी कि वो कह रहे हैं कि याददाश्त के बारे में टोका जाता है जो बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक था बचपन, ये जो गीत है लता जी का गाया हुआ, इसमें बचपन पूरा समाया हुआ है। बचपन को याद करते हैं तो एक सुकून सुखद एहसास होता है, लेकिन जब बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा गाड़ी में सवार हुए बहुत से यात्री सफ़र बीच में ही छोड़ गए, उनकी यादों की गठरी बांधे हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि अक्सर ये गीत हम जब होंगे 60 साल के, मैं अपनी धर्मपत्नी को सुनाता हूँ और कहता हूँ बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की, तो धर्मपत्नी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती और मेरे से पूछती है और आप, मैं कहता हूँ कोई शक, हम तो हंसते ही हैं, साथ में बच्चे भी मुस्कुराते हैं। क्या ही बेहतरीन बात आपने कही। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से साथियों ने बताया कि ये गीत उनकी लिस्ट में तो शामिल था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांदी से चमकते बाल किसी को अच्छे नहीं लगते, फौरन काले कर लेते हैं। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या आप अपने चांदी से चमकते बालों के अनुभवों को सबको दिखाते हैं? चलिए, हमें और एक बात जो याद आई जो आपसे पूछनी है वो ये कि क्या बचपन की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी याद है जो आपके मन में अब भी ऐसे ताज़ा है जैसे कल की ही बात हो? तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किस पर फिल्माया गया है, यानी जो पर्दे पर नजर आते हैं वो कौन है।

0: वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में। हमने पूछा था पर्दे पर कौन नजर आते हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बलराज साहनी और अचला सचदेव।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: हमारे साथी कह रहे हैं बहुत सी बातें, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने चांदी जैसे बालों को कलर कर लेते हैं पर उम्र छुपाने के लिए नहीं बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी को बनाए रखने के लिए। उम्र तो हम इस धाक के साथ बताते हैं कि देखो इस उम्र में भी हम कितने एक्टिव और अपडेटेड हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बाल तो 50 पर सफ़ेद हो गए लेकिन आज तक हमने कभी डाई नहीं करवाया, अब तो 72 पहुँच गए। तमाम मौक़ों पर लोगों ने बाल काला करा लीजिए सलाह दी लेकिन मैंने कहा कि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक नहीं कई सारी शरारतें जिनमें पुरानी मिठास हो, बारिश होती ही छत पर जाकर भीगना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं घूमने निकल जाना और लौट कर ऐसे बनना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी की आंखों पर हाथ रख कर पूछना कि बताओ मैं कौन, गली में खेलते खेलते हार जाएं तो कहना चलो एक आखिरी बार और, बिना किसी वजह के जोर से हंसना और फिर दूसरों को भी हंसा देना। ये बचपन की ऐसी बातें हैं जो इन्हें याद आती हैं जैसे कि कल की ही बात हो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज विश्व वृद्ध जन दिवस है, गीत जब हम होंगे 60 साल के, ये गीत तो इनकी पसंद पर और बहुत से साथियों की पसंद पर चल ही चुका है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि किस बातों पर टोका जाता है वरिष्ठ नागरिकों को, जो हमने पूछा उस पर वे कहने की बहुत बोलते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, इस बात पर वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर टोका जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लगातार टोका जाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज़्यादा आप बाहर मत निकलो ये बात उन्हें कही जाती है, तब अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं। क्यों जब हम 60-70 वर्ष के हो जाते हैं तब उनमें भी बचपन आ जाता है, जब वो बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है, मेरी समझ ऐसी है। उनका ऐसा कहना हमारे साथी का बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब बचपन का एक दौर वापस आ जाता है, जब

वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है वो इसलिए क्योंकि कभी कभी कहीं गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, उससे चिंतित रहने की वजह से लोग, घर के जो लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो मना करते हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है, लेकिन इसमें दोनों ही किसी तरह से उलझ जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कहने की उम्र भले ही गणित के अंकों की तरह बढ़ती रहती है, लेकिन मन यादों के गलियारों में कुछ कुछ बचपन, थोड़ा थोड़ा यौवन काल रहता ही है। अवस्था तो गतिशील है और अंतकरण बाल सुलभ रहता है। बाल्यकाल जीवन का स्वर्णिम सोपान होता है। इस अवस्था से जुड़ी जो यादें हैं वो बचपन की उम्र के बाद के लिए किसी राजशाही खजाने की जैसी होती है। यौवन की अवस्था की यादें भी कम हंसी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में बहुधा जीविका के संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ, थोड़ा कठिन दौर रहा करता है। फिर बचपन के बाद की अवस्था बालों में आई रजत सफेदी उम्र के बढ़ जाने का एहसास तो कराती ही है, लेकिन उसमें जो कोमलता है वो बादलों में भी नहीं होती, जो प्रेम की परिपक्वता, जीवन से जुड़े अनुभव के साथ बुद्धिमत्ता के भी द्योतक होती है। इस उम्र में बाल सुलभ बन यादों के पिटारे से कुछ न कुछ निकालने में लगा रहता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर आज की इबारत बनाई गई है, शायद आज सीनियर सिटीजनशिप की, सीनियर सिटीजन को धन्यवाद दे रहे हैं वो इस दिवस की, और कुछ यादें, कुछ गीत इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। देखना है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट कितनी मैच करती है आज। तो अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं, आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत हमने चुना है, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और अपनी उम्र को मात देते हैं, ये हमें बताइए।

0: सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है उम्र की। हमारे साथियों ने जो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गीत की कौन सी फिल्म का है हमने आपसे पूछा था, जब प्यार किसी से होता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे एक मित्र कह रहे हैं 100 साल तो नहीं मगर 25 साल जरूर हो गए प्यार करते करते। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र को मात नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो आनी ही आनी है, लेकिन कार्यकुशल होना एक अलग बात है और उसके लिए सभी अपने आप को बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रायः तैयार ही रखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं लेकिन दिल तो जवान होता है और जवान ही रहना चाहिए हर वक्त। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सफ़ेद बालों से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किंतु हम उम्र लोग भी अंकल कहने लगते हैं तब बालों को काला करने का विचार आता है। भई ये जो अंकल कहने की जो एक प्रथा है, अंकल और आंटी कहने की, ये बड़ी ही कह सकते हैं कि एक अजीब सी परंपरा है क्योंकि कई बार लोग हम उम्र को भी अंकल या आंटी कह देते हैं या कई बार वो अपने से छोटों को भी कह देते हैं इस तरह से, तो ये संबोधन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 100 साल पहले मतलब 1926 से 2026 में भी प्यार जारी है। भाई ये तो आपका एक चुटिला अंदाज है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो मानती हूँ कि घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो तो एक चीज़ जो मुख्य तौर पर बनी रहती है वो है अनुशासन। व्रत त्यौहार उनके होने से कुछ और ही चमक लिए होते हैं। ये संचार क्रांति का दौर है। मेरी मम्मी ने अभी हाल ही में स्मार्टफोन खरीदा और उन्होंने मोबाइल चलाना सीखा भी है, जैसे बचपन में खींच कर ले गया। कैसे वे एक एक अक्षर बड़े धीरज से सीखती थी, सिखाती थी। आज उसी धीरज की ज़रूरत हम सबको है और यही धीरज धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो धैर्य धके और अपना बचपन याद करें, बुजुर्गों की हर बात सुने और समझें। हमारे एक साथी ने यही बात कही है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल के बारे में एक से ज़्यादा बार पूछने पर बच्चे झुंझला जाते हैं, तब हमें याद आता है कि उनका बचपन जब हम एक सवाल का जवाब 50 बार देते थे। घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो इस बात को लेकर एक बात अक्सर कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, कहते हैं कि जब तुम उस दौर में जाओगे जब हम उस दौर पे थे, यानी माता पिता बनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने तुम्हें किस तरह से पाला है। तो क्या आपको भी ये बात सुनने मिलती है, किस तरह से, हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ना कल की चिंता थी ना आज का गम, कितने खुश मिजाज हुआ करते थे हम। बेशक पैसा कम था लेकिन बचपन में दम था। उम्र के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है लेकिन प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे लोग भी हैं जो शान से कहते हैं कि बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं, और अपने आप को खेलकूद और मनोरंजन में व्यस्त रखते हैं। फिर भी हमारी ज़िंदगी की किताब में सबसे बेहतरीन चैप्टर बचपन होता है। वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ दिल बड़ा होता जाता है और उसके अंदर नए नए रिश्ते और दोस्त, नए नए रुचियां और शौक शामिल होती जाती हैं। जब हम बचपन में थे, यानी वो कह रहे जब हम यंग थे, तब हमारे पेन फ्रेंड हुआ करते थे और अब रेडियो फ्रेंड और वॉइस फ्रेंड हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से भी हम अलग अलग तरीके से खुद को देख सकते हैं, ढाल सकते हैं। और अब आप ये सुन सकते हैं एक गीत जिसे हम आपको सुनवाने वाले हैं, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है आपसे पूछते हैं यही सवाल, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस बात के लिए टोका जाता है और आपने किस बात के लिए

बहुरानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के युवा भले ही इलेक्ट्रॉनिक युग में पैदा हुए हैं और उनके प्यार का ढंग भी AI से प्रभावित हो रहा है। घर के बुजुर्गों का प्यार देखें, उनके आगे ये मॉडर्न प्यार बिल्कुल टिकता नहीं। जरा सी देर में गुटरगू और जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। हम बुजुर्गों में कैसा सामंजस्य था, भले भरा पूरा परिवार था लेकिन हमारी श्रीमती जी के साथ चाय पीने, खाने और सोने में कभी कोताही नहीं करती थी। कहीं जाना भी हो तो साथ में भी जाती, अकेले जाने नहीं देती थी। इतना प्यार जवानी में कहाँ था, तब इतनी परवाह कहाँ थी। बस हम कमाने में लगे थे और वे घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती थी। अफसोस, साल भर पहले हमें छोड़ गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन का वो मौज मस्ती और बेफिक्री का दौर, बचपन के सुनहरे दिन होते हैं और वो दौर के बाद जैसे जैसे कदम जवानी की ओर बढ़ते हैं तो अंदर उत्साह और जोश का संचार होता है। यही जोश और उत्साह भविष्य को संवारने में मदद करता है और युवावस्था से सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। फिर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको वरिष्ठ होने तक निभानी पड़ती है जिम्मेदारियाँ। हमारे जीवन के इन तीनों पड़ावों में सबसे सुनहरा दौर बचपन का होता है जो कभी लौट कर नहीं आता। वहीं हमारे साथी कहने कि हम भी सीनियर हैं पर फिर भी मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे टोकना नहीं पड़ता पर वो लोग हर बात पर टोकते हैं, खाने पीने में और रोका टोकी करना, डांटना। वैसे कई बार हम ये भी होता है कि सीनियर सिटीजन वाकई बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और जिन चीज़ों की उन्हें मनाही होती है वो जब वो खाने लगते हैं तो फिर घर के बच्चों को तो टोकना ही पड़ता है, ना माने तो थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। तो ये भी आप देखिए कि अगर आपकी सेहत के लिए या आपके भले के लिए टोका जा रहा है तो

आपको थोड़ा खुद भी समझना पड़ेगा और अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि घर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जिनकी वृद्धि होती है वही वृद्धजन कहलाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कैसे आज की भारत में बताया कि समय के साथ शरीर तो ढलता है लेकिन प्रेम और आत्मा बूढ़े नहीं होते, और उम्र की तीनों अवस्थाओं को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय एक ही धागे में उन्हें पिरोया गया है। जहां बचपन यादों में है, जवानी दिल के धड़कन में, और बुढ़ापा इन दोनों के अनुभवों को समेटे हुए एक शांत सुखद ढलती शाम का आनंद ले रहा है। भाषा शैली काव्यात्मक, रोमांटिक और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भरी हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन दिल में बचपन की मासूमियत और जवानी की खूबसूरत यादें हमेशा बनी रहती है। प्रेम और प्यार में बिताई हुई हर मुलाकात, हर पल की यादें जीवन को महका देती है। चांदी से बालों में भी वही अपनापन, मीठे बोलों में वही मिठास और धड़कनों में वही चाहत रहती है। उम्र की ढलती शाम में किसी अपने का चेहरा, उसकी नज़र और जुल्फ का साया साथ हो तो जिंदगी आज भी खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपको ये पहचानना है कि किसने इस गीत को लिखा है।

कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बोल किसके हैं यही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन डे पर सलाम है हमारे उन एवरग्रीन रॉक स्टार्स को, जिनके चांदी से चमकते बालों में बादलों जैसी नरमी है और इनके मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवान बना देते हैं। ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि पापा का नया स्मार्टफोन सीखना हो या मम्मी की पुरानी सहेलियों संग गपशप, इनकी ज़िंदगी की ढलती शाम भी किसी सुरीले सफ़र से कम नहीं। तो आज अपने घर के इन एवरग्रीन बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, उनका पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और उनके तजुर्बों को एक जादू की झप्पी दीजिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा। हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। एक ओर बचपन हमें पुस्तकों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जवानी हमें संघर्ष और सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान का बोध करवाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन का सफ़र महकती यादों का सफ़रनामा है, जिसमें खूबसूरत यादों के साथ जीवन का अनुभव होता है जो किस्से कहानियों के रूप में बयान होता है। हर किस्सा कोई ना कोई सबक दे जाता है। उम्र एक पड़ाव है, जिंदगी तो बस जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कितने मौसम बीत गए हैं, बालों में चांदी उतर आई पर मन के रंग लाल पीले हैं। लोग भले ही कहें कि उम्र ढल रही है, पर हम तो कहते हैं कि उम्र की शाम सुहानी है। हम दोनों का साथ है अगर तो हर दिन एक नई कहानी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि आज की भारत में गीत पहचानने में उन्हें उलझन हुई, लेकिन कुछ गीत उन्होंने पहचाने और हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जो भी गीत हैं वो सारे शामिल हो चुके हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये जीवन का चक्र है। बचपन की शरारतें जीवन के जवानी की मीठे पल, दो दिलों का टकराना बुढ़ापे में, उन सुनहरे पल को याद करना। शरीर जरूर कमजोर हो जाता है पर दिल हमेशा जवान रहता है। हमें इस जज्बात में जीना है, जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानवर्धक विविध भारती है, जो मेरे पिताजी ने सुनी, मेरे दादाजी ने सुनी, परिवार ने सुनी, अभी मैं सुन रहा हूँ, अब आने वाला कल मेरे बच्चे सुनेंगे। तो सबसे बड़े विविध भारती की ये वरिष्ठ उद्घोषक है जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुढ़ापा अजीब है, हमारे दादा दादी एक दिन नहीं जाता जब झगड़ा नहीं करते हों, लेकिन एक पल एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। दादी को अगर दादाजी खाना ठीक से न खाए तो खुद भी ठीक से नहीं खाती हैं। उनको एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो एक वक्त के बाद ये दोनों आपस में एक सोल की तरह बन जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की ये रचना शाश्वत सत्य को रेखांकित करती कि शरीर भले ही उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो पर मन और भावनाएँ हमेशा तरोताज़ा रहती हैं। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के प्रेम और मुलाकातों तक हर पल की यादें बुढ़ापे में जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही अभी 26 की है पर दिल सदियों पुराना प्यार समझता है। तुम्हारे मीठे बोलों पर ये दिल आज भी हद से ज़्यादा धड़कता है। वैसे तो नज़रें फिराने को हंसी चेहरे बहुत हैं इस महफिल में, पर क्या करें, ये दिल तो सिर्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में ठहरता है। भाई क्या बात है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है, आवाज़ भी पहचान लीजिए।

0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती के जश्न में तो आपका इंतजार रहेगा ही, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस घर के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी पहले महत्वपूर्ण होता है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर हम भी बुजुर्ग होंगे, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। वहीं हमारे एक साथी कह रही है, मैं तो सीनियर सिटीजन में आ गई हूँ पर मैं अभी भी बच्चों की तरह ही सोचती हूँ, मेरा अपने से छोटों में मन लगता है। मैं अपने आप से ही फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और भी साइट्स देखती रहती हूँ। विविध भारती में भी एक्टिव हूँ, फेसबुक के कई म्यूजिक ग्रुप पर भी एक्टिव हूँ। तो इसी तरह से अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उम्र का जो असर है, उम्र की जो भी ऐसा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें बिल्कुल दूर होती चली जाती हैं। और आपको देखकर हम तो बस यही कहेंगे जो गीत कहने वाला है आपके लिए। फिल्म का नाम बताइएगा।

नजर नहीं। कभी कभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब तक हम अपने मन को बच्चे जैसा रखते हैं तब तक हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ही अच्छा संदेश, और इसी संदेश के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग हैं। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर बनाना है।

ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग

0: सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर

0: लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
1: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
2: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

साथ में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: किशोर कुमार की आवाज में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर।

0: तीन देवियां फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी पद की बजाय जनसेवा के लिए प्रेरित युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और जनहितैषी, सक्रिय व सुशासन का इसका मूल सिद्धांत है।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखें कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भवा है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक मुमकिन बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भर्ती हो रहे युवा विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के रोहडू में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। बच्चों पर गंभीरता से विचार करेगी और अच्छा स्कूल वही है जहां बच्चे पढ़ने के साथ साथ खुलकर सवाल पूछें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की मांग पर विद्यालय में नए भवन के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के अलावा यहां आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बच्चों से समय समय पर संवाद करना और उनके माध्यम से स्कूलों की हकीकत को समझना बेहद जरूरी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नशे के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में हर आयु वर्ग के लोगों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। भाजपा ने एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। लाहौल स्पीति में पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उससे जुड़े विषयों पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। परमार ने कहा कि एसआईआर एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें बूथ स्तर पर मतदाताओं के नाम, आयु और पते का सत्यापन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पात्र नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 की व्यवस्था भी जारी है। देश में संचार और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए बीएसएनएल लगातार काम कर रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार और बीएसएनएल की ओर से बड़े स्तर पर निवेश किया गया है। ये बात बीएसएनएल के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान निगम के वरिष्ठ महाप्रबंधक डॉ विपिन कुमार मौर्य ने कही। उन्होंने कहा कि 3G तकनीक को 4G में अपग्रेड करने का कार्य तेजी से हो रहा है। डॉ विपिन ने कहा कि बीएसएनएल की 4G सेवा में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे भारत में ही विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क विस्तार से घर बैठे लोगों को इंटरनेट और डेटा सेवाओं का लाभ मिल रहा है और सभी डिजिटल सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हुई है।
2: 4G के लिए भारत सरकार ने, इसमें बीएसएनएल ने काफी निवेश किया है। इंटरनेट सेवा या डेटा सर्विसेज का उपयोग जो है वो अपना घर बैठे इनका लाभ उठा सकते, जैसे इसमें ई बैंकिंग की बात करूं, ई शिक्षा हो गया, ई हेल्थ हो गया, घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, घर बैठे बैंक के सारे काम कर लीजिए, घर बैठे आप आधार कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की डिजिटल सेवा है। ये जो बीएसएनएल ने तकनीक का यूज 4G में किया है और आगे 5G में भी जो करेगा, ये टेक्नोलॉजी जो है भारत में ही विकसित हुई है पहली बार, और भारत उन 6 देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है और आज भारत उस पायदान पे खड़ा है कि इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके विश्व में दूसरे देशों को भी उपयोग करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी

0: आगे एक्सपोर्ट कर सकें।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का योगदान। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
1: हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य और बागवानी के लिए जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी का महत्वपूर्ण स्थान है। बागवानी में सेब की खेती का विशेष महत्व है। सेब को हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा और सिरमौर प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब की व्यावसायिक खेती का इतिहास काफी पुराना है। सेब की खेती ने हजारों परिवारों को रोजगार और आय का साधन दिया है। कई ग्रामीण परिवारों की मुख्य आय सेब की फसल पर निर्भर करती है। सेब उत्पादन से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में भी सुधार आया है। सेब केवल किसानों की आय का साधन नहीं है, इससे परिवहन, पैकेजिंग, भंडारण और व्यापार जैसे अनेक क्षेत्र जुड़े हुए हैं। सेब की पेटियां बनाने के लिए पैकेजिंग उद्योग को बढ़ावा मिलता है। ट्रक और अन्य वाहनों के माध्यम से सेब मंडियों तक पहुंचाया जाता है। इससे परिवहन क्षेत्र में भी रोजगार पैदा होता है। सेब की खरीद बिक्री से आढ़ती, व्यापारी और मजदूर भी लाभान्वित होते हैं। सेब की तुड़ाई के समय बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलता है। बागानों में छंटाई, कटाई और अन्य कार्यों के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सेब की खेती प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार देती है। सेब की फसल से राज्य को आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। हिमाचल का सेब देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में इसकी बड़ी मांग है। हिमाचल के सेब को देश भर में अच्छी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। सेब की बिक्री से राज्य में बड़ी मात्रा में धन का प्रवाह होता है। इससे स्थानीय बाजार और व्यापारिक गतिविधियां भी मजबूत होती हैं। सरकार भी सेब उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं। बागवानों को पौध, सिंचाई, तकनीक और अन्य सुविधाओं में सहायता दी जाती है। आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। उच्च घनत्व वाले बागानों और नई किस्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही बागवानों को बेहतर भंडारण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन आज सेब की खेती के सामने एक बड़ी चुनौती है। बदलते तापमान का सेब की पैदावार पर प्रभाव पड़ रहा है। कम बर्फबारी और अनियमित वर्षा भी चिंता का विषय है। ओलावृष्टि, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाना जरूरी है। सेब की खेती को टिकाऊ बनाने के लिए जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। बागवानों को आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। फसल बीमा को अधिक प्रभावी बनाने की भी आवश्यकता है। बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। इसके लिए बेहतर मंडी व्यवस्था और पारदर्शी विपणन प्रणाली आवश्यक है। सेब के क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेब से जूस, जैम, साइडर और अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सेब की खेती हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पलायन को कम करने में भी सहायक हो सकती है। यदि गांवों में अच्छी आय के अवसर मिले तो युवा अपने क्षेत्र में रहकर काम कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी तेज होगा। हिमाचल के लिए सेब केवल एक फल नहीं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये राज्य की कृषि और बागवानी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। सेब उत्पादन से किसान, मजदूर, व्यापारी, परिवहन, व्यवसायी और अन्य लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए सेब उद्योग को मजबूत करना पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अंततः कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेब ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। भविष्य में आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार व्यवस्था और सरकारी सहयोग से इस क्षेत्र को और मजबूत किया जा सकता है। सेब उत्पादकों को उचित मूल्य और बेहतर सुविधाएं मिलें, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि सरकार, वैज्ञानिक और बागवान मिलकर काम करें तो हिमाचल का सेब

0: उद्योग और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 हुए हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक ही सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का

0: अलग
1: रूपों में ढाल लेते हैं। हरा भरा भी पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी। भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता हमारे रसोई में हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की, तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है, तो बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल। और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उन पे जो आधारित फल होते हैं फ्रूट होते हैं और ये सब्जियां होती हैं शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज़ अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाना तो पनीर चला ही चला जा रहा है। बाकी चीज़ों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियाँ हैं, मेवे हैं, बीज हैं और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं। तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगते थे कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो। लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
1: बिल्कुल, लौकी को ही नहीं, अगर हम दाल में चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
0: हाँ, तो वही तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना,
1: लौकी का कोफ्ता, वाह क्या बात है।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
1: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
1: क्योंकि थोड़ा हटे वहां से
0: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाए।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद देख सकते
1: इंतजार
0: हैं, या लाइव सुनना तो सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की ज़रूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज़ उठाने के लिए उनके साहस की ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
0: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और इसके बाद इनकी ज़िंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, व्यस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
0: जी, तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
1: बिल्कुल। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की,
0: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
1: बिल्कुल। लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों जो तक उन्होंने प्रयास किए, और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका, और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
0: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें

0: वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना, और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
1: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी।
0: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
1: यही सबसे बड़ी बात है कि हाँ, अवसर देना चाहिए उनको। और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
1: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
1: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। हमें अच्छा। तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है। चलिए आपको पसंद नहीं,
4: नहीं
5: है तो आप आलू खा सकते हैं।
4: सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी।
5: बिल्कुल, क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना, उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है। फिर क्या हुआ, वो रह गई।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नेहा।
4: हाँ।
5: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल। और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
5: सबके साथ।
4: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ और अकेले भी हमें खाया जा सके, खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना। खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन तो पनीर उसका जो टेस्ट बढ़ जाता है
5: वो तो है नहीं है। लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना। हाँ। आलू को आप बैगन के साथ भी खा सकते
4: आलू को
5: हैं।
4: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं।
5: बिल्कुल, आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो। ऐसी सब्जियां जिनके साथ में पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है।
4: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: सखी सहेली,
1: सखी सहेली।
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है, अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, और जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया हो हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: बिल्कुल, कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते हैं ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
0: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हम हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भाग दौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते और हम अपने ही मन की आवाज़ सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
1: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो, कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे, लेकिन उसे देखने का हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
0: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है, बल्कि महसूस होता है, याद बनता है, और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं, या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जैसे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके।
0: हाँ।
1: तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूँ, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूँ, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि KL सहगल, पंकज मलिक, CH आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी कह रही है, संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है। उन्हें और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
0: वाह क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
1: एक बिल्कुल गीत तो सुनना ही चाहिए
0: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की

0: सालगिरह के जश्न में
1: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
2: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज़ होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
1: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भाषा को, उनको लोक गीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोक गीत हो या किसी भाषा को, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
1: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना। संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम। और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क नहीं, पर नहीं, आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
2: बिल्कुल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज़ सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर के रोक दें तो वो, आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप वो तब सुनिए कहीं। लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन में, कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहाँ पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
1: हाँ, और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफ़र कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए।
2: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है, किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
1: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए।
2: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को, किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी है जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
1: बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही हैं आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
2: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की ही नहीं।
1: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
0: इतने सस्पेंस आपने ले आया। लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
1: बताया। हम उसी पे आ रहे हैं, हम लोग उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
0: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाएं, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाएं। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
1: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वो मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है, उनके दांत भी नहीं है, तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो, और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिए ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें। तो उनसे वो बात करते हैं, जब शाम को अपने जॉब से आते हैं तो वो बात भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीज़ें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
0: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक

0: मानित और सुंदर पड़ाव है जिसके जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो कि लिखते हैं कि वृद्ध जनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं, जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हों तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन विटामिन डी कैल्शियम ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दें। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्धजन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती
1: है। बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन
1: हाँ।
0: चाय ने बाजी मार ली है,
1: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
0: आलू भी जीता है।
1: और हमारे एक साथी लिख रहे कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो
0: अच्छा।
1: कॉफी पी रहे हैं वो और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है, कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब हो जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही
0: है। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको, और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं, इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला में चौ, सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है, सच में
1: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है, और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या। मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाकर चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं।
0: कॉफी आज तो कॉफी पियेंगे, आज तो कॉफी पियेंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी हमें।
1: तो ये भी बताते चलें कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 0222867 0288। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 0224002462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
0: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
1: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो फिर किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे।
0: अच्छा, अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर हैं?
1: जी फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है एक प्यार का नगमा है,
0: क्या बात है। जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये
0: जी
1: बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर
0: जी
1: का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा क्या बात है। और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है।
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये, है ना? हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: क्या बात है, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राँझा का ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई? ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग गई थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं। हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
1: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे।
0: अच्छा,
1: और वो आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाए आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
0: अच्छा ये बताइए, खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
1: हाँ सर एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है,
0: अच्छा
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं,
0: हाँ
1: नुकसान हो गया है।
0: जी जी समझ रहे हैं, मौसम खराब हो गया ना अचानक इसलिए।
1: हाँ,
0: अच्छा हमें बताएं, विविध भारती
1: हाँ
0: इतने
1: जी
0: ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम वो जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाज जो है धीमी हो जाती, फिर तेज होती थी, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM पे चलता था हमारे यहाँ।
0: जी
1: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए एक तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो 7 क्लियर FM यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पे सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM से बिजली बल, जो बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने।
0: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
1: जी आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
0: अच्छा बढ़िया,
1: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा
0: अच्छा
1: ही आ जाता है सुनकर।
0: अरे बहुत शुक्रिया। तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत
1: हाँ
0: ऐसी नहीं
1: जी
0: है?
1: गाना ही, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
0: हाँ बस ऐसे ही जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन
1: हाँ
0: लेंगे। ठीक है, सुनाते
1: ठीक
0: हैं
1: है
0: आपको ये
1: सर।
0: दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना,
1: हाँ सर
0: सुनिए।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: सर मैं रेडीमेड का सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
1: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना, उनके सराफे मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
0: हाँ
1: वो भी सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
1: सर हमारे यहाँ पे सराफा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का केस वगैरह अच्छा चलता है।
0: और वो कचौड़ी?
1: बिल्कुल, यहाँ पे कचौड़ी और समोसे ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
0: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं यहाँ पर,
0: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
1: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
0: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे।
1: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
0: बहुत सही।
1: ये गाना सुनना सर मुझे,
0: कौन सा?
1: राजा और रंग की मूवी का, मेरा नाम है चमेली, ये लता जी की आवाज में।
0: क्या बात है, तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं, और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ सर, भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
0: अच्छा अच्छा बताइए, क्या हालचाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
0: जी।
1: और आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी।
1: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 100-200 फोन लगाए होंगे सर कम से कम।
0: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
1: और जितने भी आगे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हो, शहनाज जी हो, चाहे ममता जी हो, जितने भी आगे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
0: और मेरे से?
1: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
0: अच्छा
1: सर, क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाए हैं, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
0: अच्छा बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
1: सर अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है सर, पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
0: नहीं लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर।
1: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
1: जी सर, जी सर,
0: वो जलवे कायम है।
1: हाँ सर जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है और नमक वाली चाय भी कायम है और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर वो।
0: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैयां।
1: जी जी सर।
0: क्या बात है
1: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर ये चलना देना ये छोड़कर।
0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज। आपके लिए ये गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर, मैं
0: बोलिए।
1: गांव लिहे डिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सवान बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत
1: तो।
0: बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह ये रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो बहुत जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ हाँ देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना?
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना,
0: जी
1: तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा
0: सखी,
1: हमारा तो फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश,
0: अच्छा सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है।
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश।
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया।
1: मेरा नाम रामेश्वर कुमार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हाल चाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2-3 माह पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या होगा, एक्सीडेंट कैसे होगा? वो
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थे सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है, सलामती है?
1: सर सर फट गया था सर, अभी 2-3 महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल
1: जी
0: लोग
1: सर।
0: गाड़ियां वाड़ियां ठीक से नहीं चला रहे मालक।
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी है
0: है ना, हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकलें तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाएं। और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी
0: दूसरी बार, हमें तो याद नहीं है।
1: सर। अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे अमियां लग गई आम में कि नहीं लगी।
0: अरे हो, अमिया अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई।
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हालचाल? आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर।
0: अच्छा,
1: सर वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
0: नहीं, थोड़ी थोड़ी जाना थे भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए हैं।
1: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं, तो आप तो जानते ही होंगे।
0: हाँ थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर।
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही जे बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या

है बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या।

आली ताकत धीमी ताकत आली ताकत धीमी ताकत धाला आम ताकत धुगी ताकत आधी के नंद ताकत झुम्मी ताकत नाक झुम्मी ताकत नाक झुम्मी ताकत नाक नाक झम धारी ता जग धारी ता जाने जाने को धारी ता को धारी के डे धारी ता जग धारी ता जाने जाने को धारी ता को धारी के डे झम धारी जग धारी ताकत नाक नाक ता झुम्मी ता झुम्मी ता झम धारी जग धारी जाने जाने को ता झुम्मी ता झुम्मी ता झुम्मी ता ताकत धंगी करूं कर दे करूं ताकत धंगी करूं पाखा नारंगी की पाका पाता चिमटा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

में माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ। सर
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है। सर यूनुस जी, आपकी आवाज तो हमारे दिलों में बसी है बिल्कुल। आपकी आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर, आपने सही पहचाना। कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सवाल का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं। एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहे, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे। विविध भारती से बहुत अच्छे लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी
1: जी? सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और कई वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़ टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गईं।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है सर ये।
0: हाँ।
1: और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा,
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता है सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा,
1: और जब जब समय मिलता है सर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज, और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइनें हैं।
0: इरशाद,
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर।
0: जी नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं, विविध भारती की कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: सर, और
0: शुक्रिया।
1: शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर,
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेटांड से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं आप। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नजर में?
1: सर मेरी नजर में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भूले बिसरे गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
0: हाँ जी,
1: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों का राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
0: जी,
1: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें, और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
0: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: वाह भाई वाह,
1: तरह के गाने के बोले सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867088 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 40024662। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच अगर तुम
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होना चाहिए। नई दिल्ली में आज रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की जिनका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तक कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है।

0: कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का पांचवा संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समारोह के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन भाषण देंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि जीएमसी बाल योगी संसदीय गरिमा, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणादायक विरासत हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। श्री मांडविया ने देश भर के सभी शारीरिक शिक्षा पेशेवरों से इस पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों के स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उधर स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को और हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लिया गया ये भजन अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन, और अगला भजन हम आपको सुनवाएंगे कुछ संदेशों के बाद।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नवरात्रि फिल्म से लिया गया यह भजन।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

मोहम्मद रफ़ी और दिलराज कौर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म भक्ति से शक्ति फिल्म का ये गीत, माफ़ कीजिएगा, ये भजन अभी आप सुन रहे थे। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम की 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त नर्मदा शर्मा। तो आप सभी जानते हैं आज है बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, गुरुवार, वीरवार। और आज के दिन रोजगार समाचार से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको देते हैं और साथ ही बात करते हैं विज्ञान जगत पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रोजगार संबंधित। हिमाचल प्रदेश में रोजगार और भर्ती से जुड़ी प्रमुख सरकारी भर्तियां, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए 228 पद और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 16 अक्टूबर 2026। हाई कोर्ट की भर्ती के लिए लाइब्रेरियन, चपरासी, माली और कुक कम अटेंडेंट सहित 15 पदों के लिए आप निवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है और इसकी अंतिम तिथि है 27 अक्टूबर 2026। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 23 पद पर नियुक्ति होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर रहेगी, 22 अक्टूबर 2026। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के लिए मल्टीपर्पज वर्कर, पैरापंप ऑपरेटर आदि के 30 पद खाली है, इस पर नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए

अंतिम तिथि रहेगी 19 अक्टूबर 2026। तो और भी जानकारी देंगे हम आपको एक ब्रेक के बाद। तो पहले हम आपको सुनवाते हैं एक गीत और उसके बाद फिर से हम बात करेंगे।

0: वो देखो औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करें?
1: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
2: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमे गर्भवती महिलाएं भी शामिल है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अल्फाज है बदले,
5: सौगात नई, कुछ नए तराने,
6: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
7: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
5: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
6: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
7: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
5: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर।
7: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
6: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
8: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण

0: भरपूर प्यार गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं रोजगार संबंधित। पालमपुर में निजी क्षेत्र भर्ती के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। वर्धमान यार्न एंड थ्रेड्स में लगभग 150 पदों के लिए अवसर की सूचना दी गई है। 12वीं पास युवाओं के लिए 100 पदों की भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मंडी में मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 18 पद बैच वाइज भरे जा रहे हैं। रोजगार पंजीकरण अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर रहेगी। तो युवा मंच कार्यक्रम में हम और जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे थोड़ी देर के बाद। सुनते हैं एक गीत।

0: तो युवा साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और अब हम बात करेंगे विज्ञान जगत की, जो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना कठिन है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। सुबह अलार्म की आवाज़ से जागने से लेकर रात को मोबाइल पर संदेश पढ़ने तक हमारे दिन का लगभग हर काम विज्ञान और तकनीक की देन है। विज्ञान ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और तेज बनाया है। यदि हम पिछले कुछ दशकों पर नज़र डालें तो विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में मानव ने चंद्रमा और मंगल तक अपनी पहुंच बनाई है। भारत भी इस क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे करके दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय दिया है। चिकित्सा विज्ञान में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले जिन बीमारियों का इलाज संभव नहीं था, आज उनका उपचार उपलब्ध है। आधुनिक उपकरणों, नई दवाइयों और अनुसंधान के कारण लोगों की औसत आयु बढ़ी है और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी हुई हैं। कृत्रिम अंग, रोबोटिक सर्जरी और टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकें स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति ला रही हैं। तो अब लेते हैं ब्रेक, सुनते हैं एक गीत और साथ ही साथ सुनेंगे पहले कुछ संदेश।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच और हम बात कर रहे हैं विज्ञान जगत पर। तो युवा साथियों, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विज्ञान जगत का एक प्रमुख विषय है। ये तकनीक कंप्यूटरों को सीखने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम बना रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसके साथ जिम्मेदारी और नैतिक उपयोग की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर फीचर के, हर चीज़ के कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब हम बात करते हैं युवा साथियों की, तो सकारात्मकता होना बहुत ही ज़रूरी है। कृषि क्षेत्र में विज्ञान ने किसानों के जीवन को आसान बनाया है। बेहतर बीज, आधुनिक सिंचाई की तकनीक, मौसम पूर्वानुमान और कृषि मशीनों ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इससे पहले ही हमारे किसानों को पता चल जाता है कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा। और जैसे बीज डालने के लिए, जैसे हमें खेती करनी है तो उसके लिए जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है तो पहले से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन और किस सप्ताह तक बारिश आने वाली है, तो हम अपनी खेती जो है उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है हमारी वैज्ञानिकता का। विज्ञान का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये हमें प्रश्न पूछना सिखाता है। विज्ञान अंधविश्वास की जगह तर्क, प्रमाण और जिज्ञासा को महत्व देता है। यही वैज्ञानिक सोच समाज को प्रगतिशील और जागरूक बनाती है। युवाओं के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की चुनौतियों का सामना करना और समाधान करना नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संभव हो सकता है।

तो युवा साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका युवा मंच कार्यक्रम में। आज के युवाओं के सामने अवसरों की कोई कमी नहीं है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण जैसे अनेक क्षेत्र खुले हुए हैं। यदि युवा अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और निरंतर सीखते रहें तो वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और देश के लिए सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि विज्ञान केवल ज्ञान का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। ये हमें सच्चाई खोजने, समस्याओं और समाधान करने और बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम सभी वैज्ञानिक सोच को अपनाएं और ज्ञान, नवाचार तथा मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। तो अब कार्यक्रम संपन्न करने की नर्मदा को अनुमति दीजिए। तो युवा साथियों, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

शुद्ध 6:05 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत। कार्यक्रम रहेगा सुरमई सांझ, और किसान व बागबान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर।

रात्रि 8 बजे सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। एक ही कलाकार शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अभिनेत्री आशा पारिक पर फिल्माए कुछ चुनिंदा गीत। रंगे गजल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे News@9, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 का दैनिक हाइलाइट्स, जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। छह बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेब बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल व न्यूजीलैंड के किसानों बागवानों के लिए एक्सपोजर विजिट करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि न्यूजीलैंड हिमाचल में सेब की बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए इच्छुक है। उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की। इस बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल में बागवानी के विविध आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्रदेश के 148 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड आज से शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्धारित ड्रेस कोड का उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन, पेशेवर पहचान, संस्थागत गरिमा को बढ़ावा देना और विद्यालयों में अधिक व्यवस्थित व पेशेवर शिक्षण वातावरण तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के साथ साथ शिक्षकों को पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा। आशीष कोहली ने कहा कि ड्रेस कोड सभी शिक्षकों व प्रधानाचार्यों सहित आउटसोर्स आधार पर कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय आवश्यकता, दिव्यांगता और गर्भावस्था की स्थिति में संस्थान के प्रमुख की अनुमति से निर्धारित ड्रेस कोड में आवश्यक छूट या परिवर्तन किया जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ऐतिहासिक रिज मैदान पर वृद्ध जनों की वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से हिमकेयर योजना के तहत इलाज में आ रही परेशानियों और लंबित देनदारियों को जल्द

0: निपटाने का आश्वासन दिया। धनीराम शांडिल ने कहा कि वृद्धजनों का समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने युवा पीढ़ी से वृद्धजनों के तिरस्कार और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बजाय उनके अनुभवों का फायदा उठाने का आह्वान किया।
1: हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए वो ऐसी कोई हिंसाएं ना हो, इस प्रकार की बात बातें ना हो, जहाँ भी हम वृद्धजनों का तिरस्कार करें उनको ऐसा का हो संकल्प और रियली स्पीकिंग वास्तव में सिखाना भी क्या है हमारी जनरेशन को भी कि देखिए आपका मालूम होने आपको बचपन लाइफ बनाया थकलाया हंसाया शिक्षित किया और यहाँ तक बनाया, इसलिए आज इनका जो समय है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए।
0: उधर नाहन में भी एक निजी स्कूल में शहर के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक अजय सोलंकी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वृद्धजनों के मनोरंजन के लिए कई प्रतियोगिताएं करवाई गईं। सोलंकी ने वृद्धजनों के जीवन को संघर्ष भरा बताया और आज की पीढ़ी से उनके संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
2: है उन्होंने वो जीवन जिया है जिस जीवन में बहुत संघर्ष थे और संघर्षशील जीवन जीने का मतलब ये होता है कि और दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हमको भी प्रेरणा लेनी चाहिए।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विदेश दौरे के दौरान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो स्थित भारतीय दूतावास प्रमुख अनन्या अग्रवाल से मुलाकात कर कई कूटनीतिक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर भारत और नॉर्वे के बीच बढ़ती मित्रता व हिमाचल प्रदेश के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने दूतावास के अधिकारियों के साथ हिमाचल में मौजूद धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन पर बातचीत कर इसे विदेशों में भी दूतावास के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित करने का आग्रह किया। भाजपा ने SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। लाहौल स्पीति में पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उससे जुड़े विषयों पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। परमार ने कहा कि SIR एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें बूथ स्तर पर मतदाताओं के नाम, आयु और पते का सत्यापन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पात्र नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म 6 की व्यवस्था भी जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरमई सांझ।

सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं सुरमई सांझ में। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म मोहब्बत जिंदगी है से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युवगल स्वरों में।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अंदाज वही कुछ अल्फाज है बदले,
3: सौगात नई कुछ नए तराने,
4: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
2: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
3: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
3: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
4: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
0: श्रुतो, ब्रेक से पहले आपने जो गीत सुना वो हमने लिया था फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, और इसमें गायक कलाकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। अब हम आपको सुनवा रही हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत हमसाया फिल्म से।

श्रोताओं, प्रेम बंधन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेरी सनम फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सुरमई सांझ का ये सफर यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां का।

सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आज आपके साथ नर्मदा शर्मा, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी खेती, हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण तीनों से जुड़ा है। और आज का ये विषय है कार्बनिक एवं जैविक खेती। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में आज खेती की कई चुनौतियों का खेती को सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है, उत्पादन लागत बढ़ रही है और रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे समय में जैविक खेती किसानों के लिए एक टिकाऊ और लाभकारी विकल्प बनकर सामने आई है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जैविक खेती होती क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जैविक खेती ऐसी पद्धति है जिसमें खेती के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग माफ कीजिएगा तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी खेती है उसमें जैविक खेती जो है वो ऐसी पद्धति है जिसमें खेती के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण उपायों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग न्यूनतम या बिल्कुल नहीं किया जाता है। किसान व बागवान भाई बहनों, हमारे बुजुर्गों की खेती काफ़ी हद तक जैविक ही थी। उस समय खेतों में गोबर की खाद डाली जाती थी, पशुपालन खेती का अभिन्न हिस्सा था और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती थी। आधुनिक कृषि के साथ उत्पादन

0: रहा, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की सेहत प्रभावित होने लगी। अब फिर से किसान प्राकृतिक खेती की और जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं। जैसे पहले खेती होती तो हर सीजन में, यानी हर जैसे 6 महीने के बाद फसल कटती थी, तो उसमें खाद डाली जाती थी और गोबर की खाद डाली जाती थी, जो कि बहुत ही लाभदायक होती थी और सेहत के लिए भी अच्छी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि हम रासायनिक पदार्थों को डालने से वो खेती जो है उसकी उर्वरकता कम होती जा रही है। तो और भी बात करेंगे इस विषय पर एक ब्रेक के बाद, सुनते हैं कुछ संदेश और फिर
1: अरे
0: लोकगीत।
1: वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे?
2: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
3: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 किसी भी आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई,
6: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: टोल रेट्स बढ़ने का वेट करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर।

0: डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
0: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: तो किसान व बागवान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम है मौजा ग्राइंदियां और आज हम बात कर रहे हैं कार्बनिक एवं जैविक खेती के बारे में। तो हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य के कई क्षेत्रों में किसान जैविक और प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपना रहे हैं। मंडी, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में अनेक किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक उत्पादन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कांगड़ा क्षेत्र के कई किसानों ने सब्जियों और हल्दी की खेती में जैविक तरीकों को अपना लिया है। किसानों का कहना है कि शुरुआत में उत्पादन थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2-3 वर्षों के बाद मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्पादन स्थिर होने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। इसी प्रकार मंडी जिले के कुछ किसानों ने वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की। पहले भी हर सीजन में रासायनिक खाद खरीदने पर काफी खर्च करते थे, अब वे अपने खेत और पशुपालन से प्राप्त गोबर का उपयोग करके स्वयं खाद तैयार करते हैं। इसमें खर्च कम होता है और मिट्टी की संरचना भी बेहतर होती है। तो श्रोताओं, एक किसान का अनुभव अक्सर 1000 किताबों से अधिक प्रेरणा देता है। एक किसान अन्य किसान भाई बहन जो हैं वो भी इस तरफ अब बढ़ रहे हैं। सबसे पहला लाभ है मिट्टी की सेहत में सुधार। जैविक पदार्थ मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं। यही सूक्ष्म जीव पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। जल संरक्षण, जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी पानी को अधिक समय तक रोक कर रखती है, इससे सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो सकती है। और लाभ की बात करें, किसान स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके खाद और कीट नियंत्रक तैयार कर सकते हैं। इस तरह कई लाभ हैं। जैविक खेती केवल खाद बदलने का नाम नहीं, ये एक संपूर्ण कृषि प्रणाली है। इसमें फसल चक्र, मिश्रित खेती, पशुपालन, वर्षा, जल संरक्षण और जैव विविधता बढ़ावा दिया जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम आपको सुनवाएंगे कुछ संदेश और उसके बाद हम आपको एक उन्नत किसान से नेचुरल फार्मिंग के बारे में बातचीत सुनवाएंगे।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
0: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट। TNC अप्लाई।
3: तो किसान साथियों, अगर आप भी जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो पूरे खेत को एक साथ बदलने के बजाय छोटे क्षेत्र से शुरुआत करें। अपने पशुओं के गोबर के से कंपोस्ट तैयार करें, बर्मी कंपोस्ट इकाई लगाएं, फसल अवशेषों को ना जलाएं और उन्हें खाद में परिवर्तित करें। धीरे धीरे आपके अनुभव बढ़ने पर क्षेत्र का विस्तार करें। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
4: गलबात राम राम
5: जी। राम राम जी।
4: जी अपना नाम दसा।
5: मेरा नाम है सुखजिंदर सिंह।
4: हां जी।
5: दिलेज बरदोवा, पोस्ट ऑफिस घाट जीरो, सिविल वाली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।
4: अच्छा सुखजिंदर जी, खेती बाड़ी करते हैं ना?
5: हां जी जनाब।
4: कितना के अरसा हुई है खेती करदे?
5: खेती करदे के 2018 ते लगा प्राकृतिक खेती।
4: अच्छा
5: करना तो उस टाइम 7 साल हो गए।
4: अच्छा इससे पहले रसायन वाली खेती करदे?
5: 2018 ते पहले रासायनिक खेती करदे।
4: अच्छा
5: उससे खर्चा ज्यादा आंदा।

0: हाँ खर्चा याद आंदा। उसके बाद ये आया 6 दिन का हड़ा सम्मेलन था अपना पालनपुर।
1: अच्छा पालमपुर कितनी तुम ट्रेनिंग?
0: पालनपुर की जी
1: अच्छा ती
0: ये
1: खेती।
0: प्राकृतिक खेती, सुभाष पालकर जी आए हैं साढ़े ना,
1: हाँ
0: उन्होंने
1: जी
0: जिन्हें जो जुड़े ने इस चीज,
1: हाँ जी हाँ
0: उन्होंने इस चीज समझाया सू बड़े गौर तरीके ने। तो 2018 से अं प्रकृति खेती कर रहे हैं, 14 दिन लगा हा, मतलब हाड़े फादर हो करते
1: हाँ
0: इस
1: जी
0: चीज़ जो जिन्हें खेती बढ़ावे, तो उन्होंने जो मार्गदर्शन उन्हें दिते इस चीज़ जो
1: अच्छा
0: भी खेती करने दे।
1: अच्छा ये यानी कि तुम एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर आई हो ना?
0: एक हफ्ते ट्रेनिंग की, तू उसके बाद आए फिर उस काम
1: अच्छा
0: किया अपना।
1: तो फिर तो हम मास्टर ट्रेनर बनी ही है
0: हाँ जी
1: ना?
0: हाँ जी हाँ जी,
1: अच्छा तो दी पंचायत कौन दसी तो? हाँ
0: हाड़ी पाउंदी है घाट जोड़ पंचायत।
1: अच्छा तो यानी कि तुम अपनी पंचायत में मास्टर ट्रेनर भी है ना
0: हाँ
1: ने?
0: जी हाँ जी जनाब,
1: और न लोगों जो भी सिखाया भी रियाई के?
0: हाड़ा एक समूह है अपना।
1: अच्छा
0: हाँ भी औरतों का ना,
1: हाँ जी हाँ
0: तो उस सारे सारे काम करते यही चीज़ दे, प्रकृति
1: अच्छा
0: खेती जो भी अपने घर से गालू बचालू जिन्हें भी हैं ना,
1: हाँ
0: उन्होंने अपना घर का ही मतलब सर्कल बनाया।
1: अच्छा। सुखजिंदर जी किन्नी की जमीन है तो हवाल?
0: साढ़े 25 कनाल है,
1: कहना देखा अगर हाँ बेमौसमी सब्जियां उगांगे तो ही कदा की 4 पैसे।
0: हल्दी
1: जी
0: या
1: जी
0: हल्दी जो मतलब हूँ है बिजनी ब्लॉक च जाके है
1: हाँ
0: 90 रुपये ज्यादा सरकार चुका दी 90 रुपये, किसान ने बड़ा फायदा इस चीज़ जो।
1: हाँ जी जियाँ ये सब्जी वगैरह कुछ बेचते भी
0: ये
1: नहीं?
0: साढ़ा ही है सरकार जी, जड़ी जमीन हाड़ी सह है सड़क पर सारी
1: हाँ
0: जिन्नी भी है फ्रंट जड़ा है सड़क लगता सारा, तो
1: हाँ
0: उत्ती सारा जिन्ना भी है पिंड आन जान जिन्ना भी है गड्डिया का सारे उत्थे रुकने सब्जियां चलिया नहीं उत्ते,
1: अच्छा
0: फिर मंडी जाने हाँ जो कोई ये नहीं है दिक्कत।
1: अगर ये पता भी लगी जाता कि प्राकृतिक खेती
0: हाँ
1: जड़ी
0: जी
1: से
0: हाँ जी
1: कुतु मिलनी है
0: हाँ
1: सह
0: जी हाँ
1: बना
0: जी हाँ
1: वो
0: जी
1: चली गया कि
0: हाँ जी हाँ
1: सुखजिंदर
0: जी
1: का घर
0: हाँ जी हाँ
1: कुतु
0: जी
1: है ना?
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जो भी बड़ी खुशी होंगी कि जलू आहां दे किसान साथी हैं कोई अगर ते पेशे करने कोई जानता है ना
0: हाँ
1: कोई जलू बाहर का बंदा होंदा तो सह कि जलू कई बार बोलते हैं ना कि वो हाँ फलाने मधुमक्खी है पालने आने दे घर जाना है ना
0: हाँ जी हाँ
1: या
0: जी हाँ
1: कुनी
0: जी
1: मुर्गे पाले या कुनी
0: हाँ जी हाँ
1: बकरियां
0: जी हाँ
1: पाली
0: जी
1: हैं
0: हाँ
1: या
0: जी
1: कोई खेती करा
0: हाँ
1: दा
0: जी हाँ
1: ना
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: जी तो पौध वगैरह आपू तैयार कर दे?
0: नर्सरी हाँ आपू तैयार करते
1: पौध
0: अपने
1: आपू तो यहीं कर
0: अपने
1: दे?
0: अपने पहले करता मैं बाहर मतलब पिंडे पुंडे सारे बेचने हैं, मतलब
1: हाँ
0: सारे की
1: हाँ जी
0: समझाना
1: हाँ
0: इस चीज़ इं तैयार करनी है
1: हाँ
0: कितनी
1: जी
0: गोबर पानी
1: हाँ
0: इतना, तो हूँ ये है कि इस बार मैं घटाई था थोड़ा ये काम
1: हाँ
0: सब
1: आपू जोगी।
0: आपू अपने योगा करता है सारा जिन्ना भी
1: अच्छा
0: सर्कल
1: जी
0: जिन्हें।
1: ये जल तो हाँ पौध तैयार कर दे
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: के पोलियो से बनाया आई है कि
0: पॉलियो
1: नहीं?
0: से बनाना पड़ता जनाब,
1: अच्छा
0: हाँ ये तो तुम एक बड़े बच्चे लिखा तैयार करना पाते ने,
1: हाँ
0: 15 दिन लाई के बच्चे लिखा बिल्कुल दिन रात इन्हें करना रहना पड़ता।
1: कितने भाई कितने का पोलियो सा?
0: ये देखो अही आप खुद तैयार करते इस चीज़ जो इं
1: अच्छा
0: बंजा ही बनाने
1: हाँ
0: किट्ठे करने तरपाला तरपूला पानी है,
1: हाँ
0: उसके बाद जो हीट रहा अंदर जे
1: हाँ
0: हो सकता है बर्खा हो तो हीटर भी
1: हाँ
0: जाना पाते अंदर इन्हें की
1: अच्छा
0: बीज उठाने तीन।
1: तो जी चलो पोलीथीन च जी चलो यदि भराई कर दे इं कप्पा च लगा या ये कुछ
0: देखो
1: इं
0: नहीं
1: सही?
0: अजकल आई हैं अजकल ट्रे आई हैं जी
1: अच्छा
0: पाली उस ट्रे होनी ना
1: हाँ
0: 50-50 होंगे पीस वे किटे पीस 50 पीस होने 50 20 लाई दिए तो हाँ थोड़ी थोड़ा मैल ही लगना है मिट्टी अद्धा गलूडा लगना सारा, तो उस 50 पीस निकल जाने तो
1: बाद दृश्य निकालना कि ट्रे दे
0: सब पानी दे के पहले पानी देना तो
1: सर
0: चीजा
1: गली
0: के
1: कंदी
0: हाँ
1: भी
0: ना ना गलनी नरम होना थोड़ा ना पौधा नरम
1: हाँ
0: होना, उसके बाद तो हाँ थले दे रख दी जी कहना पौधा बाहर आ
1: अच्छा
0: जाता फिर
1: पूरी गाची बाहर आई जानी
0: गाची
1: है?
0: बाहर आ जानी जनाब।
1: अच्छा तो सब यानी कि ठीक है ना?
0: हाँ जी ठीक है
1: चुकने
0: सारा
1: रखने भी खरा है ना
0: बहुत
1: ये
0: वधिया
1: कदी
0: जनाब।
1: धुप्पा रखना हो या कुछ
0: हाँ
1: जगह
0: जी हाँ
1: अदला बदली करनी हो ना?
0: हाँ जी हाँ जी कि गाँव का काम रखे है 2-3 गाँव रखी पूरा डेयरी का काम भी है यार।
1: आता जी तो दस्या कि तो हाँ प्राकृतिक खेती करा कर दे तो इस बीच जी खाद पी तो देसी पाते होने?
0: देसी
1: अच्छा
0: सारी जी देसी, अहें क्या करना पे नालियां बना लेनी है कोई जी,
1: हाँ
0: यहाँ खेतर बांधे ना जी सुहागा फेरते हैं
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: अहें वो नहीं करने, अहें क्या करने हैं बट्टा पाने हैं,
1: अच्छा
0: बट्टा उपर सब्जी लानी है जिस
1: हाँ
0: ग्रोथ भी शैल रहती
1: हाँ
0: सब्जियां दी,
1: हाँ
0: कम
1: जी
0: जड़ियाँ नालियां होनी है ना उन जहाँ अपना कच्चा गोहा पाई चलना जो अगली फसल चाड़ा जड़ा गोहा तैयार हुई,
1: जी तो दस्या 2 गाय रखी हैं?
0: ते 3 गाय जनाब
1: अच्छा 3 गाय
0: तीन
1: के
0: गाय
1: कौन नस्ल है गाय दी?
0: एक साहीवाल ही मेरे लिए बड़ी ना
1: हाँ
0: सह सरकार ने मैं जो उस चीज अनुदान भी दिता साहीवाल रखने का, वो
1: हाँ
0: है अपनी प्राकृति खेती जी यहाँ जीवामृत बनाने हैं
1: हाँ जी
0: सरकार
1: हाँ
0: का एक ये चीज ही अभियान था कि जो प्राकृति खेती का जरा गुंतर यूज होना है वो
1: हाँ
0: होना साहीवाल गाय का,
1: अच्छा
0: तो उस चीज सरकार ने मुझे मुआवजा दिता इस चीज के 33,000 रुपया मेरे की इस चीज
1: हाँ
0: मिलना गाय का,
1: अच्छा कुतु
0: तो
1: त्यांदी भी गाय
0: ये गा मतलब अपने इस
1: यानी कि सरकार द्वारा तो जो भी अनुदान सहायता राशि मिल
0: हाँ
1: रही है
0: अनुदान
1: ना
0: सहायता राशि मिल
1: एक
0: रही।
1: गुंतरे इकट्ठे करने वास्ते एक से लाइनिंग वाला भी मिलता
0: हाँ जी
1: हाँ
0: हाँ जी हाँ
1: स्टेप
0: जी हाँ
1: से
0: जी
1: बनाया तो
0: हाँ
1: हाँ
0: जी जमाया खड्डा बनाया अभी तो
1: हाँ
0: हाडे कोल का घर 20 लीटर
1: हाँ
0: डेली गाय गुंतर होंगे,
1: हाँ
0: उस भी सरकार अनुदान दे दी 8,000 रुपया गौ खर्च
1: हाँ
0: पानी ताई,
1: हाँ जी
0: देखो
1: हाँ
0: सरकार भी 6,000 रुपया इस टाइम गेहूं दे दी रेट सरकार
1: हाँ
0: जमींदारा वास्ते किसानों वास्ते
1: हाँ जी
0: बहुत खुशी की गल है,
1: हाँ जी
0: प्राकृतिक खेती जरा एक मोड़ बड़ा बड़ा हिमाचल च आया हाड़े से।
1: हाँ जी कर दिखा भाई कुल मिलाई कि हाँ ये बोल सकते कि अगर हाँ कुछ करना चाहन तो सरकार हर एक कदम पर हाँ सोगी है।
0: मैं बोला हर ते एक गां आ गए हैं
1: हाँ
0: किसान एक बारी चल रहा है सही गां
1: हाँ पर ये है कि हाँ जो कुछ करना पौना
0: करना पड़ना।
1: कने मदद तो जेड़ी से कोई कमी नहीं है ना।
0: नहीं जी नहीं,
1: आजकल दिखा ऐसी कृषि दिया इतनी
0: हाँ
1: जेड़ी
0: जी हाँ जी हाँ
1: स्कीम
0: जी
1: आई है,
0: हाँ जी
1: तारबंदी बाड़बंदी कुछ
0: बिल्कुल
1: तो ऐसी जायदे जोड़ी
0: बिल्कुल
1: मर्जी
0: बिल्कुल
1: स्कीम ले लिया है ना,
0: हाँ जी
1: कुछ फसलों का बीमा करवाई लिया
0: करवा
1: है ना,
0: लिया
1: इसके
0: बिल्कुल।
1: बावजूद भी दिखा ऐसी ऐसी तकनीकां नोई नोई आई हैं, लेकिन फिर भी जमीन जड़ी से खिलियां तो खिलियां
0: बंजर रखी है, बंजर सारी
1: पौना शुरू हो गई ना। तो अपनी जमीन बिच कुछ पौधे वगैरह भी लगाए फलदार?
0: असा लाए जी, एक सेबे बूटे लाए ना, पर
1: अच्छा
0: सेब साढ़े थोड़ा टेंपरेचर च कामयाब नहीं हुए मेरे, है
1: अच्छा
0: तो टेंपरेचर ही सेब ना मतलब
1: हाँ
0: कामयाब नहीं हुआ। जरा यह अमरूद का पौधा वो
1: हाँ
0: लाया एक मैं इलाहाबादी
1: हाँ
0: ताइवान, पर
1: हाँ
0: उदी ग्रोथ ठीक है अपने इलाके, अमरूद भी शैल है, मीठा अमरूद है,
1: कन साइज भी था काफी
0: हाँ काफ़ी
1: बड़ा
0: है, पाँच
1: बड़े
0: सौ 500 mg का साइज है, खाने में मीठा वधिया।
1: तो कदू लाए सेबां दे
0: ये
1: पौधे?
0: लाए मैं सर 2020 च लाए, 5 साल हो गए न, तो हर साल ही फलते,
1: अच्छा
0: छे महीने बाद फलता फलता।
1: सेब लगे भी इयां
0: सेब लगे हैं 2-3 बारी, पर फिर हाँ रंगड़ा रुंगड़ा पे गया पंगा,
1: तो थोड़े छोटे रहे ये होने ना,
0: छोटे रही ये कहना एक रंगड़ बड़े पौधे ना
1: तो कदू तले ही पौधे इयां सेबां दी
0: ये
1: कना मधु ना
0: हॉर्टीकल्चर च मंगवाए हैं जनाब,
1: उतु नगोटा सूरियां
0: ना
1: मिली?
0: आम नगरोटा सुरियाँ मिली है साढ़े ना ब्लॉक च,
1: अच्छा इधर लाभा जी आम्ब नींबू वगैरह नहीं कुछ?
0: नींबू नाम्बू जो देखो हम अही करने हैं खेती सब्जी सब्जियां वगैरह की,
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: इस चाहे वो चीज़ यूज करिए
1: हाँ
0: तो फिर
1: जी
0: साढ़े जमीन रुक जाती सारी।
1: जी गाय का जहाँ डेयरी का जिक्र किया है
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: दुध वगैरह बेच दे,
0: हाँ जी जनाब,
1: कुतु बेचना है वो?
0: अपने पिंड च भी जिंदा जिन पता साढ़े लागे डेरियां डूरियां तो होंगे डेरिए सुटे ही है, तो
1: हाँ
0: ये है पिंड च लगी जाता दुध सारा।
1: अच्छा किन्ने दुध बिकी जाता देने का?
0: 3 गाय इस टाइम, 2 गाय सोई हैं तो कोई 7 लीटर दुध इस टाइम बन ही लाया मैं,
1: अच्छा
0: हाँ
1: क्या भाव रेट है वो तो
0: सठ
1: चल?
0: रुपये
1: अच्छा
0: 60 रुपये बिका
1: हाँ
0: दूध।
1: देखा ग्राएं चेता इतना भाव भी जरा सा ठीक है
0: हाँ जी
1: ना,
0: हाँ जी हाँ जी
1: दुए भाग रहा देखिए तो देखा खाल महंगी तारा मेरा
0: सब कुछ
1: महंगा
0: महंगा ही,
1: का महंगे
0: हाँ
1: हुई
0: जी
1: है
0: हाँ जी
1: ना,
0: हाँ जी
1: पू महंगा
0: सब कुछ ही महंगा है,
1: देख दूध बिकी जाता ना,
0: बिकी जाता जनाब सारा ही,
1: बाकी नहीं है छाह वगैरह नहीं छोड़ते?
0: छाह वगैरह जनाब सब कुछ ही छोड़ दे, हम घरे दुध जी होना दुध
1: हाँ
0: छाह भी छोड़नी है
1: दिया पनीर वगैरह बेच
0: सब कुछ
1: दे,
0: जनाब, खोआ
1: खोआ
0: होइया पनीर होइया, जे करे दिल किता ता बर्फी बनाई ले जनाब,
1: हाँ
0: दिल किता ता पनीर बनाई ले, कर बाहर भी देता जिसे जरूरत है, जिन्हें को नहीं बोलिया कि पनीर चाहिए जी तुझी भी मैं ता
1: अच्छा
0: देता पनीर।
1: तो हाँ जी सिंचाई का क्या साधन है उत्थू?
0: सर एक ता अपने खड्डा दा मोटर चुके पानी,
1: हाँ जी
0: कर
1: हाँ
0: एक बोर है हाड़े दा अपना,
1: अच्छा
0: हाँ सरकार दा वो सोसाइटी बनाई है अपनी बोरे दी,
1: हाँ
0: तो उस
1: जी
0: चाड़ा से निकली जाता है पानी या सर्कल, कन
1: अच्छा
0: दो मोटर जो लोड नहीं होता दूसरी मोटर कर लेने स्टार्ट, है तो पंगा ही
1: हाँ
0: है बिजलियां दा अजकल, पर लोड तो
1: हाँ
0: पूरे नहीं होते,
1: हाँ जी
0: पर चलो फिर भी उतना कराया भी अहें किसानी कर सकते हैं अपनी
1: अच्छा
0: जमीन की सिंचाई कर सकते
1: जेड़ा
0: हैं।
1: बोर कराया है आपू कराया कि कुछ अनुदान वगैरह?
0: नहीं नहीं अनुदान जी, ये चौधरी चंद्र कुमार जी उस टाइम हाड़े फादर हो रहा बड़ा सहयोग किया ना, चौधरी चंद्र कुमार जी हाड़े ने इस टाइम कृषि मंत्री ना,
1: हाँ जी
0: उन्होंने बड़ा सहयोग किया जी हाड़े घर टका अड़वें पला दिता,
1: अच्छा
0: है साड़ा घर किला, घर हाड़ा किला है ना, 1/2 किलोमीटर घर तो है कहना 1/2 किलोमीटर तो है साइडा च
1: हाँ हाँ
0: किला
1: जी
0: घर है जनाब, तो फिर उस हाँ एक सोसाइटी बनाई अपने
1: अच्छा
0: चाचे ताऊ माने नाल रली के,
1: हाँ जी
0: तो उस चीज हाँ अपना पानी का सर्कल चलाया,
1: अच्छा
0: हाँ कहना एक हाड़ी है खड्ड लग गई है जहाँ सदाबहार पानी है मुकदा ही नहीं,
1: हाँ
0: एक साथ चाह अपनी मोटर रखी हुआ
1: अच्छा यानी कि पानी पूरा हो जाता
0: पूरा
1: जल
0: जना पूरा,
1: लगाना होगा था ना,
0: हाँ।
1: बाकी टैंक वगैरह नहीं कोई बनाया जी रोकने
0: देखो
1: वास्ते
0: नहीं नहीं
1: बरसाती
0: नहीं टैंक नहीं,
1: पानी है ना?
0: नहीं जी ना अज तक नहीं बनाया, बनाना पैना मैंने वो ना,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: बहुत जरूरी है जनाब, क्योंकि सब्जियां कम करना लाइट
1: हाँ
0: चल जाए पानी चाहिए उधरों का टैंक तो
1: हाँ जी
0: बनाना पैना है ना,
1: हाँ
0: जे काम
1: जी
0: जी करना तो फिर
1: हाँ
0: पिछे
1: जी
0: क्या रहना।
1: बाकी जी तो दस्या काफी जमीन है तो हवाल था जमीन ने बाड़बंदी वगैरह क्या कहती हो?
0: बाढ़ बंदी जनाब हालत है ही पे, चलो जो बाहर ले जंगली जानवर ना
1: हाँ
0: उन्हों का देखो परमात्मा वालों बंदी परहेज है
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: थोड़े घट आमदे मेरे लिए,
1: हाँ जी
0: बाकी ये तार बंदी कितनी है अपनी,
1: अच्छा
0: हाँ
1: बाकी नहीं कोई स्कीम का लाभ नहीं लिया कोई है ना?
0: इस चीज बाढ़ बंदी जीन लिया जनाब अजय
1: अच्छा
0: अजय जीन
1: अच्छा
0: लिया, बाकी प्रकृति खेती च मेकी 7-8 लाभ मिली इस चीज अनुदान मिली
1: हाँ
0: हर एक जो जितने जितनी आप पता क्या जितनी किसान मेहनत करगा सरकार भी उस
1: हाँ
0: हिसाब ने प्रोवाइड
1: हाँ
0: कर
1: अगर
0: दी ना बंदे
1: देखा
0: की,
1: कुछ भी लाभ अगर कुछ मिलना था तो कुछ
0: हाँ
1: ना कुछ तो करना पौना,
0: करना पौना दिखाना पौना
1: खाली
0: है,
1: अगर हाँ अपने इस फायदे तक अगर लाभ ही लै ना
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी हाँ जी
1: तीन भी
0: हाँ
1: जरा सा नहीं चलना
0: नहीं
1: काम का ना,
0: चलना, कई बोलते कि
1: क्योंकि
0: हाँ जो ये नहीं मिल रहा है नहीं, देखो पहले कुछ करना पौना सरकार जो
1: हाँ
0: दिखाना पौना कि हाँ एक किसान के लायक ना कन काम करके ओके दसाने हैं,
1: करना देखा अजकल तो किसान जेड़े की प्राकृतिक खेती वाले किसान है जी तो हाँ जिक्र किया
0: हाँ जी हाँ
1: कि
0: जी हाँ
1: कणके
0: जी
1: रेट ज्यादा ही हल्दी है,
0: हाँ जी
1: उन्होंने एक पंजीकरण हुआ था कि ना जो प्रमाणित किए जाता कि ये बड़ा किसान है विभाग के कर्मचारियों द्वारा कि इस ये जड़ा था प्राकृतिक खेती करता,
0: हाँ जी हाँ जी
1: इन्हें तो कोई भी अपना उत्पाद ले आ तो नहीं बोना तो देसी है बिल्कुल नए
0: नहीं
1: रेट दिया ना
0: देखो इस चीज ये
1: हाँ
0: जुड़े नहीं हुई है 8 साल, क्योंकि 2018 ते प्रकृति खेती का एक अभियान चल रहा है इस चीज च,
1: हाँ जी
0: है ना
1: हाँ
0: इस चीज जो बंदा उस टाइम दे चले आया
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: तो समझो आज तक कामयाब है।
1: हाँ जी,
0: प्रकृति खेती का मोड़ एक नवा लियाने वास्ते।
1: जी बिल्कुल, तो हाँ ठीक गलाया दिखा भाई, कोशिश अहां दी भी ए होना चाहिए कि हाँ जो भी होला होला हुण प्राकृतिक खेती आले पासे जड़ा से मुड़ना पौना, जी तुहां दस्सिया कि मती सारियां जियां बीमारियां ते बचने दा अगर कोई इलाज है तो सही है प्राकृतिक खेती है ना।
0: देखो एक दिन ए मोड़ लैना पौना हिमाचल, हर किसान जो इस मोड़ पर आना पौना, प्रकृति खेती दे काबिल बनना पौना।
1: जी सुखजिंदर जी, अहां दी जिहड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हां च तुहां क्या सुनेहा देना चाहंगे कि सही कियां अपनी खेतीबाड़ी करी के जड़ा सा अपना रोजगार चलाई पान।
0: तो हां मेहनत कर रहा है ना।
1: हां जी,
0: अपनी जे जमीन जायदाद है अपने कोल, बाहर घूमने कोई लोड़ नहीं।
1: हां जी,
0: तो अपनी जे अपने सिंचाई दे भी साधन है तो अपनी खेतीबाड़ी करो, सबसे बढ़िया तरीका यही है।
1: हां जी,
0: सबसे बड़ा रोजगार अपनी।
1: हां देखा भी अपना काम है ना।

0: हाँ जी,
1: कोई कुछ से रोब नहीं है।
0: मतलब भी कोई नहीं जनाब।
1: हाँ कहना देखा मते अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जेड़े से आहां दे किसान ने जेड़े से अपनी पहचान जेड़े से बनाई ले ही है
0: हाँ जी,
1: जी। सुखजिंदर जी तो हाँ अपना कीमती समय निकाली गई आहां दे टियाले पर आए अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव तो हाँ आहां कन्ने साझा किते तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान व बागवान भाई बहनों, अभी आपने सुनी उन्नत किसान सुखजिंदर जी के साथ कुशल कुमार यानी किसान मित्र की बातचीत प्राकृतिक खेती पर। अब सुनते हैं कुछ संदेश।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो किसान भाइयों, इसके साथ ही आज का मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अच्छा जी, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
7: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
6: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी शिमला के किसानवाणी कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज है आपका पसंदीदा किसानवाणी कार्यक्रम लेके मैं हरी सिंह चंदेल,
8: और हरी सिंह चंदेल के साथ मैं सुरेखा वर्मा। किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण शिमला के मीडियम वेव से हर मंगलवार, वीरवार और

0: सब्जियां भी आपके खेतों में। तो ये महीना बहुत व्यस्त आपका रहने वाला है। बहरहाल आज हम बात करने वाले हैं लिलियम के बारे में। तो जो हमारे पुष्प उत्पादक भाई हैं, अगर सोच रहे हैं कि हमें पॉली हाउस में या खुले में फूलों की खेती करनी है, तो उन्हें लिलियम जो है एक बहुत अच्छा विकल्प है उनके लिए। तो बात करते हैं लिलियम की खेती के बारे में। और हर फसल हर पौधे की तरह लिलियम या फूलों में भी जो है उन्नत और अनुमोदित किस्में होती हैं। और अगर आप उन्नत किस्मों का प्रयोग करेंगे बिजाई के लिए, तो जाहिर सी बात है स्वस्थ फूल मिलेंगे और काफी मुनाफा भी मिलेगा। आइए जानते हैं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में।
1: जी, बात करें उन्नत किस्मों की तो उसमें आती हैं एशियाटिक लिली, ओरिएंट लिली, लॉन्गी फ्लोरम, एलए हाइब्रिड और एलओ हाइब्रिड।
0: तो ये रही उन्नत किस्में लिलियम की। और एशियाटिक लिली के फूलों की अगर बात करें तो व्यास में ये 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर और बाहर की ओर खिले हुए होते हैं और ये लाल, संतरी, गुलाबी, पीले और सफेद रंगों में उपलब्ध होते हैं। ओरिएंटल लिली के फूल आकार में बड़े और सुगंधित होते हैं। ओरिएंटल लिली को आमतौर पर ज्यादा ठंडे वातावरण की जरूरत होती है और लॉन्गी फ्लोरम लिली के फूल सफेद होते हैं। LO यानी कि लॉन्गी फ्लोरम और ओरिएंटल, या फिर LA हाइब्रिड लिली जिसमें कि लॉन्गी फ्लोरम और एशियाटिक दोनों प्रकार की किस्मों के गुण होते हैं। तो अब बात करते हैं इनके प्रवर्धन की।
1: जी, तो लिली में प्रवर्धन बीज द्वारा, कंदियों, छोटे कंदों, एरियल कंदों तथा कंदों की तहों के द्वारा किया जा सकता है। बीज द्वारा प्रवर्धन नई किस्में उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर लिलियम को स्केल तथा उत्तक संवर्धन द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। लिलियम का बल्ब लहसुन के बल्ब जैसा होता है, जिसकी मोटी मोटी मांसल तहे या गुथिया आधार पट्टिका से जुड़ी होती है। स्केल विधि द्वारा प्रवर्धन के लिए स्वस्थ बड़े आकार के तथा प्रसुप्तावस्था से मुक्त कंद लिए जाते हैं। बाहर तथा मध्य वाली गुंथियों को आधार पट्टिका के कुछ हिस्से के साथ मुख्य कंद से अलग कर लिया जाता है तथा इसका फफूंदी नाशक के घोल में आधे घंटे तक उपचार किया जाता है।
0: स्केल के निचले भाग को NAA 500 ppm से उपचारित करने के बाद किसी अच्छे रोग मुक्त मिश्रण जैसे कि कोकोपीट, लकड़ी के बुरादे या वर्मिकुलाइट में रोपित किया जाता है। स्प्रे पंप के द्वारा वातावरण में नमी बनाकर रखी जाती है। इन स्केल्स में कुछ महीनों बाद छोटी छोटी कंदियां बन जाती हैं और ये कंदियां पूरा फूल देने वाला कंद बनाने में 3 से 4 साल लेती हैं। तो बात हो गई है अब प्रवर्धन की। इसके बाद एक मुख्य घटक की बात आती है, वो है मिट्टी, कि किस तरह की मिट्टी में लिलियम की खेती आप कर सकते हैं।
1: तो लिलियम की खेती के लिए उत्तम पानी के निकास वाली रेतीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। पॉलीहाउस में खेती के लिए मिट्टी में कोकोपीट भी मिलाया जा सकता है। बीमारी से बचाने के लिए मिट्टी को 5% फॉर्मेलिन के घोल से उपचारित किया जाता है, क्योंकि अधिक नमी वाली मिट्टी में कंदों के सड़ने का भय भी रहता है।
0: अब बात करें प्रकाश की, कि किस तरह की रोशनी इसके लिए चाहिए, कितनी चाहिए। तो लिलियम के जो बढ़िया पुष्प उत्पादन के लिए आपको हल्की छाया यानी कि 2000 से 3000 फुट कैंडल की आवश्यकता होती है। इसके लिए गर्मी के दिनों में इन्हें 50 से 75% छायादार जाली के अंदर उगाया जाता है और ज्यादा प्रकाश होने से पौधों के तने यानी कि पुष्प डंडियों की लंबाई नहीं बढ़ती और फूलों की गुणवत्ता पर भी उल्टा असर पड़ता है। बात करें अगर हम अपेक्षित आर्द्रता की, कि कितनी नमी इस फूल को चाहिए, तो इसकी अच्छी बढ़ोतरी और पैदावार के लिए 60 से 75% नमी का होना बहुत जरूरी है।
1: जी, अब बात करते हैं लिलियम की रोपाई की विधि और समय की। वैसे तो लिलियम को वर्ष भर उगाया जा सकता है, लेकिन निचले पहाड़ी क्षेत्रों में अक्टूबर से नवंबर और मध्यम क्षेत्रों में फरवरी से मार्च तथा ऊंचे क्षेत्रों में अप्रैल से मई का समय बहुत ही अनुकूल होता है। हरित गृह तथा शेड नेट हाउस में क्यारियों को 40 से 50 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक क्यारी के बीच 30 से 40 सेंटीमीटर का रास्ता रखना चाहिए। जहाँ पर बरसात ज्यादा हो वहाँ जमीन से उठी हुई क्यारियाँ बनाएं। इन क्यारियों में 5 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अच्छी तरह सड़ा गोबर डालें। एशियाटिक लिली में कंदों को 10x20 सेंटीमीटर की दूरी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर लगाना चाहिए। इस तरह प्रति वर्ग मीटर में 50 कंद जो है लगाए जा सकते हैं।
0: तो अब बात की जाए तापमान की। तो श्रोताओं, लिलियम की सफल खेती के लिए दिन का तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे ऊपर के तापमान पर पुष्प डंडियों की लंबाई और गुणवत्ता पर उल्टा असर पड़ता है, जिससे कंदों की वृद्धि रुक जाती है और पुष्प कलियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। ओरिएंटल लिली पर तापमान ज्यादा होने का ज्यादा उल्टा असर

0: देखा गया है। लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए जो कंध हम इस्तेमाल में ला रहे हैं उनकी प्रोग्रामिंग हुई है, यानी कि वे सुप्तावस्था से बाहर आए हैं या नहीं। डॉर्मेंसी यानी कि सुप्तावस्था खत्म होने पर कंधों में नई जड़ों का विकास होने लगता है और अंकुरण प्रस्फुटित होने के लिए तैयार रहते हैं।
1: जी अब बात करें पोषण की, तो पहले 3 सप्ताहों के दौरान लीलियम की फसल को संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर के रोपण के 3 सप्ताह बाद डालनी चाहिए तथा इसकी दूसरी खुराक जो है 1 माह के अंतराल पर डाल देनी चाहिए। यदि फसल वृद्धि के समय पौधों में पीलापन नजर आए तो तुरंत 1 किलोग्राम यूरिया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से फूलों की तुड़ाई से 3 सप्ताह पहले छिड़काव करें। इसके अलावा पानी में घुलने वाले उर्वरकों जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तथा पोटाशियम नाइट्रेट का 2:1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करें या 200 से 500 मिलीग्राम प्रति लीटर नत्रजन के घोल का छिड़काव प्रति सप्ताह करें।
0: जी, लिलियम की खेती में पौधों की बढ़ोतरी के लिए श्रोताओं सिंचाई का खासा महत्व है। क्यारियों को रोपण से पहले सींच देना चाहिए और बाद में हल्का पानी लगाना चाहिए। तो किसान साथियों, पुष्प उत्पादक भाइयों, उम्मीद करते हैं कि लिलियम की खेती के बारे में हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी लाभान्वित करने वाली साबित होगी।
1: जी तो सुरेखा जी, अब कार्यक्रम में इंतजार रहता है हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं करण कुमार की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कर्ण कुमार की आवाज में ये लोकगीत। तो अब किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का, जिसका विषय है सेम ए माइट व उनका प्रबंधन। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी, और उनसे बातचीत करेंगी सुरेखा वर्मा।
1: किसान बागवान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी, जो कि विषय विशेषज्ञ हैं मौन पालन उद्यान विभाग नवबहार शिमला में। और आज हम उनसे जानकारी हासिल करने वाले हैं सेब में माइट और उनका प्रबंधन इस विषय पर। डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: तो दिलीप सिंह जी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज सिर्फ माइट की समस्या और सेब बागीचों में उनका प्रबंधन कैसे किया जाए इस विषय पर, तो सबसे पहले एक बड़ा आम सा प्रश्न है कि माइट असल में है क्या?
2: देखिए, माइट प्रकृति में पाए जाने वाले छोटे सूक्ष्म जीव है। हमारे एप्पल इकोसिस्टम में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। ये करते क्या है, पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस पौधे में नहीं हो पाती, उसमें पुअर क्वालिटी फ्रूट रहता है और यील्ड लो हो जाती है, ओवरऑल प्लांट की हेल्थ को असर पड़ता है। मुख्यतः माइट यही है।
1: जी, तो हमारे जो बागवान हैं वैसे तो उन्हें मालूम है कि माइट कैसे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने नया बगीचा लगाया है और नई नई अभी बागवानी कर रहे हैं, तो ये माइट को कैसे पहचाने, और साथ ही इसकी पहचान के साथ साथ इनकी मुख्य किस्में कौन कौन सी है?
2: देखिए, हमारे जो एप्पल इकोसिस्टम में या सेब के बगीचों में जो मुख्यतः है, वो तीन तरह की माइट पाई जाती है। नंबर 1, यूरोपियन रेड माइट, जिसको पेनोनिकस अल्मी कहते हैं। 2, स्पॉटी स्पाइडर माइट। नंबर 3, रस्ट माइट। ये सारी माइट की जो किस्में हैं, ये सारी पत्तों के टिश्यू पे फीड करती है। इनकी बहुत ही नोकीली जीवा होती है, जिससे ये पत्तों के अंदर छेद करके सेल वॉल को डैमेज करती है और उससे सेल सैप निकलता है और उसे चूस लेते हैं। होता क्या है, धीरे धीरे पत्ते आपके रंग छोड़ देते हैं, हरापन और ब्राउनिंग हो जाती है।
1: जी
2: तो ये प्लांट की ओवरऑल हेल्थ को इस तरह से प्रभावित करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, छोटा सा प्रश्न मेरा है कि ऐसा क्या है सेब के पत्तों में जो माइट इसी पर फीड करती है या इसी की पत्तियों का भोजन करती है?
2: माइट वैसे प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें सब में पाई जाती है
1: जी
2: और उनमें सब में ये इफेक्ट करती है।
1: जी डॉक्टर साहब, तो इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे सेब बागीचे में माइट का प्रकोप हो गया है, ये हम कैसे पता करें, या हमारा बागवान कब अलर्ट हो जाए कि उसे पता चल जाए कि अब सेब के बागीचे पर जो है माइट का प्रकोप या आक्रमण हो चुका है, क्या लक्षण रहते हैं?
2: सबसे पहले तो ये, क्योंकि नंग नाखों से देखना इन्हें बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा जब भी बगीचे में आप जाएंगे तो आप एक 10x का लेंस ले ले मार्केट से,
1: जी
2: और बगीचे में जब भी जाएंगे तो पत्ते के जो हमारे पुराने पत्ते हैं उनके निचली तरफ को आप लेंस से झांकेंगे तो आपको ये मुख्यतः दिख जाएंगे।
1: अगर हम लेंस लेंगे तभी माइट हमें दिखेंगे, लेकिन इससे पहले कोई इनके प्रकोप का कोई एक खास लक्षण दिखता है सेब पौधे में या पत्तियों पर?
2: इनमें जब ये पत्तियों में इन्फेक्शन करते हैं तो पत्तियों का रंग धीरे धीरे, क्योंकि ये सेल सैप चूसते हैं, पत्तियों का रंग धीरे धीरे फीका पड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पत्तियां ब्राउन

0: हो जाती है, समय से पहले झड़ भी जाती है
1: जी,
0: जिसके कारण हमारा फ्रूट साइज छोटा रह जाता है, फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है। और इनकी अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पत्तों पे जाले बनाने शुरू कर देती है अपने वॉकिंग रास्ते, जिसके कारण ये यहाँ वहाँ जा सके।
1: जी, तो डॉक्टर दिलीप अब ये जानना चाहेंगे कि माइट का जीवन चक्र कैसा रहता है और उसको पनपने के लिए कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं या कौन सा अनुकूल मौसम रहता है, इन सब के बारे में भी आप विस्तार से हमारे बागवान श्रोताओं को बताएं।
0: ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने शत्रु को अच्छी तरह पहले पहचानें, तभी हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि उसका जीवन चक्र कैसा है, जीवन की कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, हम कहाँ किस व्यवस्था में उसका उचित प्रबंधन कर सकते हैं। तो माइट करते क्या है कि ये पहले अंडे देते हैं, मैंने जैसे कहा है कि ज़्यादातर ये पत्तों के निचली तरफ को अंडे देते हैं, तो अंडे के बाद जो इनकी व्यवस्था होती है वो निम्फ निकलते आगे, तो वो सारे एक जैसे दिखते हैं परंतु वो भी अपनी व्यवस्थाएं बदलते रहते हैं, कैंची उतारते रहते हैं जब जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है या बड़े होते हैं। उसके बाद अडल्ट बनते हैं, अडल्ट द्वारा से अंडे देते हैं और इनका जीवन चक्र चला रहता है। परंतु ये बहुत सारे और भी जितने हमारे वनस्पति है या दूसरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बगीचों के साथ या घास है उस पे भी ये जनरली रहते हैं, तो इनका जीवन चक्र चला रहता है। इस तरह से इनको जो फेवर कि ये बढ़ने की परिस्थिति कैसे आ जाती है बगीचे में या हमारे को हार्म कैसे ये पहुंचाते हैं, वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे आपके यूरोपियन रेड माइट है, जब हम बगीचे में जाते हैं तो लाल कलर की वो छोटी छोटी मकड़ियां हमारे को दिख जाती है, लंबे लंबे बाल वाली
1: जी।
0: तो उसको फेवर करता है टेम्परेचर हमारा 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वातावरण में जो आर्द्रता है वो 80 से 85% होगी, तब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये परिस्थितियां इनको अनुकूल होती है। और जो दूसरी किस्म है टू स्पॉटेड माइट, ये येलो कलर की होती है, इसके दो ब्लैक स्पॉट होते हैं बॉडी पे
1: जी।
0: और बाल भी दिखे गए आपको, बहुत ज्यादा ये रिप्रोडक्शन करती है और इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 70 से 75%, एनवायरमेंट में डस्ट हो, डस्टी वेदर हो। तो तीसरी जो किस्म हम डिस्कस कर रहे थे रस्ट माइट, ये बहुत ही सूक्ष्म है, इनके लिए स्काउटिंग के लिए भी हमारे को 20x का लेंस लेना पड़ेगा, 10x से भी ये दिख नहीं पाएगी। लेकिन जब टेम्परेचर आपका 28 से 32 डिग्री हो जाए, 60 से 65% आर्द्रता है वातावरण में, तब इनका इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई इनके जीवन चक्र अनुकूल परिस्थितियां कैसी होती हैं जिनमें ये पनप जाती हैं, लेकिन अब हमारा बागवान इनका प्रबंधन कैसे करे, इनके प्रकोप को कैसे रोक सकता है।
0: जैसे ओवरडोज ऑफ इंसेक्टिसाइड है, इस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, या बगीचे में आपके खरपतवार है अत्यधिक, ज्यादातर चौड़े पत्ते वाले खरपतवार बगीचे में अगर है तो ये उस पर भी फीड करती रहती है अल्टरनेटिवली और इनका लाइफ साइकिल चला रहता है। और बगीचा अगर आपका स्ट्रेस में है, आपका न्यूट्रिशन वहाँ प्रॉपर नहीं है या इरीगेशन प्रॉपर नहीं है या ओवरडोज ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे हम नाइट्रोजन के केस में अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं
1: जी,
0: हमारा जैसे आपने कहा कि प्रबंधन कैसे करें, मुख्यतः प्रबंधन हमारा हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोचेस को पहले प्रेफर करते हैं जब भी हम किसी कीट या बीमारी का प्रबंधन करते हैं, ताकि हमारा एनवायरमेंट भी साफ रहे। तो उसमें जो हमारी सबसे पहली प्रैक्टिसेस होती है, क्योंकि हम रोज बगीचे में जाते हैं उसकी देखभाल करते हैं, तो कल्चर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है, जैसे प्रॉपर इरीगेशन देना पौधे को जितना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन है और वहाँ पे बगीचे की ट्रेनिंग प्रोनिंग कि ताकि हवा का सर्कुलेशन उसमें प्रॉपर बना रहे और पत्तियां ज्यादा देर आपकी नमी ना रहे पत्तियों में। और चौड़े पत्ते वाले खरपतवार तो हमारे को बगीचे में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, बगीचा साफ सफाई होनी चाहिए नीचे, जिसमें ये इनके माइट्स पनपते रहते हैं। और ओवरडोज ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने कहा था अभी फर्टिलाइजर जैसे आपके नाइट्रोजन है, वो क्या करते हैं कि पत्ते को ज्यादा सकुलेंट बना देगी, जहां ज्यादा नाइट्रोजन होगी वो पत्ते बहुत डार्क ग्रीन हरे दिखेंगे, आप उसमें माइट को बहुत ज्यादा सैप मिलता है और उसमें इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी, तो इसके अलावा डॉक्टर साहब, क्या कोई जैविक प्रबंधन भी उपलब्ध है कि जिनको करके हमारा बागवान न केवल अपने बागीचे को बचा सके बल्कि पर्यावरण के साथ भी जो है सामंजस्य बिठा कर ऐसे उपाय कर सके जिससे हमारा ना पर्यावरण प्रदूषित हो ना ज्यादा रसायनों का प्रयोग हो? तो क्या कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं?
0: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैविक प्रबंधन में पूरी दुनिया में माइट पूरी दुनिया में है, सभी फसलों में है, जितनी भी हम उगाते हैं नेचर में भी है, लेकिन इसका जो प्रबंधन इफेक्टिव प्रबंधन है बाकी बाहर के देशों में भी जो है पोली हाउस जैसी कंडीशन में जहाँ इसको बहुत फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल से ही है या जैविक प्रबंधन से ही है। उसमें इनको खाने वाले माइट को खाने वाले ही माइट जिसकी मुख्यतः किस्में है टिफ्लोड्रोमस पायरी एम्बलाइशियस स्पीशीज, ये दो स्पीशीज तो पूरी दुनिया में आर्टिफिशियली लैब में आर्टिफिशियल फीड पे कल्चर की जाती है, इनका मास प्रोडक्शन किया जाता है, फिर ये फसलों पे रिलीज की जाती है जहां ये फसलों को खाने वाली माइट को कंट्रोल करती है या उस परिस्थिति से नीचे रखती है जहां हमारे को इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है।
1: जी, यानी कि हमारे किसानों के मित्र कीट जो है बागीचों में छोड़े जाते हैं, जो हमारे बागवानों के मित्र कीट हैं वो बागीचे में छोड़ देने से या उनकी संख्या बढ़ने से जो है ये शत्रु माइट का प्रबंधन होता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, हमारा बागवान जो है अपने आप कैसे पहचाने कि अपने आसपास जो पारिस्थितिकी है या फिर अपने बागीचे में जो उनके मित्र माइट है उनके मित्र कीट है उनको कैसे पहचाने? थोड़ी पहचान आप बता दीजिए।
0: जो प्रीडेटरी माइट मैंने अभी कहा था उनकी पहचान वो ट्रांसपेरेंट कलर की होगी, प्रीडेटर हमेशा फास्ट मूविंग होगी, माइट की तरह ही दिखेगी, पॉपुलेशन उनकी कम होगी, जो उनके अंडे होंगे वो भी ट्रांसपेरेंट कलर के होंगे, जहां पर वो एक्टिव होगी वहां पर जो है माइट की पॉपुलेशन भी कम रहेगी।
1: जी,
0: और अगर हमने दूसरे कोई प्रबंधन किया है केमिकल वगैरह वहां वो भी उनकी पॉपुलेशन भी आपको नहीं दिखेगी और वो एक्टिव भी नहीं दिखेगी। इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे है माइट को खाने वाले कीट वगैरह जो आप बगीचों में देख सकते हैं जैसे लेडी बर्ड बीटल है जिसको हम तोता मामा बोलते हैं या लेस विंग है, ऐसे बहुत सारे कीट दूसरे भी है प्रकृति में जो इन पे ही फीड करते हैं और इन पे ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। जैसे मैंने कहा था रस्ट माइट में बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे कीट पतंगे हैं जो उसके उस पे फीड करते हैं।
1: तो ये तो बात हो गई जैविक प्रबंधन की। अब आते हैं बहुत आसान प्रबंधन जो कि हम हमारे बागवान हमारे किसान हम सभी इस्तेमाल करते हैं, वो है रासायनिक प्रबंधन। हालांकि इस तरफ हम जाना नहीं चाहते लेकिन कई बार मजबूरी में ये भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से किया जाना चाहिए संतुलित मात्रा में।
0: रासायनिक प्रबंधन के लिए हमने तभी जाना है जब एक लोअर लिमिट जो हमने तय की है जिसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं माइट की पॉपुलेशन में कि 5 से 10 आपके यूरोपियन रेड माइट और 2 स्पॉटेड माइट चले जाए तब हमें केमिकल प्रबंधन की तरफ जाना ही होगा। और रस्ट माइट में 300 से 600 वो हमें या लैब में आप डिटेक्ट कर ले या खुद आप स्काउटिंग कर ले
1: जी।
0: तो उस समय हमारे पेड़ को हार्म पहुंचना शुरू हो जाता है जिसे हमारी क्वालिटी वगैरह इफेक्ट हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास नॉन यूनिवर्सिटी से भी शेड्यूल रहता है स्प्रे शेड्यूल, उसमें भी बहुत सारे केमिकल अनुमोदित है। और हमने वो करने कैसे है, जनरली हमें सिलेक्टिव कैरिसाइड यूज करना है, रिपीट कोई भी एक सीजन में दूसरा माइटिसाइड नहीं करना है, और एनवायरमेंटल सेफ जैसे हॉर्टिकल्चर ऑयल है या सल्फर की स्प्रेज है
1: जी।
0: अर्ली और लेट सीजन में अगर हम ऐसे प्रबंधन करते हैं तो भी माइट पे कंट्रोल किया जा सकता है। और जो लेबल में इंस्ट्रक्शन दी होती है कि इतनी कंसंट्रेशन में करना है, किसके साथ मिलाना है, किसके साथ नहीं मिलाना है, कितना ml कितने पानी में डालना है, वो नॉन यूनिवर्सिटी के और डिपार्टमेंट के शेड्यूल में रहता है, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो हमारे पास जो माइटीसाइड है और स्प्रे ऑयल है उसमें अगर हमारे शेड्यूल में देखें तो 10 तरह के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जो हम जनरली मार्केट से खरीदते हैं और स्प्रे करते रहे, उसमें उसका डोज रहता है कितने लीटर पानी में करना है, कब करना है आपने, कब नहीं करना है, किसके साथ नहीं मिलाना है, ये सब इंस्ट्रक्शन हमारे शेड्यूल में रहती है। उसके बाद आता है हमारा, इनमें अभी कुछ ऐसे हमारे प्रबंधन के माइटीसाइड इंक्लूड किए हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि पेस्ट में रेजिस्टेंस को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये आपके इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर क्लास से आते हैं। इनमें हमारा जैसे मैडन है, अंडों को मारने का काम करता है
1: जी।
0: तो ये एनवायरमेंट सेफ है, ये हमारे रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह का ओबेरॉन हम यूज करते हैं या कनौची यूज करते हैं, इटॉक्सॉक्सोल यूज करते हैं, कई ऐसे हैं, जैसे इटॉक्सॉक्सोल है हमारा बोर्नियो है, वो बॉडी पे पड़ेगा तो वो कैंचवी नहीं उतार पाएगा और आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, दूसरी अवस्था में नहीं जा पाएगा, जिसे हमारे प्रबंधन में ये सेफ प्रबंधन में आते हैं। लेकिन जब ज्यादा ही आपकी पॉपुलेशन हो जाए, ऐसे हमारे कोई नहीं है कि अंडा भी मार दे और एडल्ट भी मार दे, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तब हमारे पास एक ऑप्शन, समर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम 2 लीटर समर ऑयल और उसके साथ कोई माइटीसाइड जो एडल्ट को मारती है वो हम डालें, जैसे हमारे इसमें रिकमेंडेड था एबासिन है, वो लिटरेचर में है रिकमेंडेड, उसके साथ डालेंगे तो अडल्ट मर जाएंगे और अंडे आपके तेल प्रबंधन कर देगा। तो उससे क्या होता है, हमें उसकी पूरी लाइफ स्टेजेस का प्रबंधन मिल जाता है। तो मैं किसान और बागवानों से यही आग्रह करता हूँ कि आप अपने बगीचे में स्काउटिंग करें, माइट के लिए 10x का लेंस ले जिसे आप पहचान पाए उसकी व्यवस्थाएं, और उसके लिए तभी प्रबंधन करें जब उनकी संख्या 5 से 10 से ऊपर हो चुकी हो। आप हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल को 1/2 इंच स्टेज पे करें 4 लीटर, फिर आगे मौसम के हिसाब से जब हमारी फ्रूट सेटिंग आती है उसमें भी जरूर करें, जिससे इसकी एग स्टेजेस कंट्रोल हो जाती है और इसका 60 से 70% हमें प्रबंधन उसी से मिल जाता है।
1: जी, किसान साथियों, बागवान साथियों, सेब में माइट और उनका प्रबंधन, इस विषय में आपने विस्तार से डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी से जाना। उम्मीद है एक बात समझ आ गई होगी कि अत्यधिक रसायनों का प्रयोग ना करते हुए भी आप जो है अपने फल बागीचों का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी, इतनी खूबसूरत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत, विषय था सेब में माइट व उनका प्रबंधन। इस विषय पे जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिलीप सिंह नरगेटा जी और उनसे बातचीत कर रही थी सुरेखा वर्मा।
1: तो इसी के साथ अब कार्यक्रम किसान वाणी संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी

0: ये हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है।
1: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
2: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
1: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
2: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
1: टूटी हो सर्विस तार
2: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
1: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
2: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
1: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
2: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज रोहडू में करीब 183 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। भाजपा ने SIR को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, लोगों को गुमराह करने और भ्रम फैलाने के लगाए आरोप। प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए गठित अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने मुख्य सचिव से की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। शिमला में राज्य स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने वॉकाथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। और प्रदेश के 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान करीब 183 करोड़ रुपए की लागत की 61 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर चिड़गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने 1 दिसंबर से दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने और MIS के तहत खरीदे जाने वाले सेब के खरीद मूल्य में भी वृद्धि की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने PM श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय CBSE रोहडू के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के विभिन्न सवालों के जवाब दिए और उनकी जिज्ञासाओं और विचारों को सुना। संवाद के दौरान एक छात्रा द्वारा स्कूल के नए भवन की मांग रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने नए भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए भवन के निर्माण के लिए ये राशि पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाएगी। सांसद राजीव भारद्वाज ने SIR को लेकर कांग्रेस व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल SIR को लेकर देश भर में गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव भारद्वाज ने कहा कि हाल ही में चुनाव आयोग की बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त रूप से साफ किया कि SIR से जुड़े सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, जिससे चुनाव आयुक्तों के बीच सहमति न होने के दावों पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा SIR को लेकर फैलाए जा रहे झूठ व भ्रम न केवल संवैधानिक संस्था पर हमला है, बल्कि हिमाचल के ईमानदार मतदाता का अपमान भी है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पर सियासी ड्रामा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सालों तक सोई रही और अब फर्जी वोट हटाए जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने भेंट की। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव M. रामचंद्रुडू के नेतृत्व में अंतर मंत्रालय के इस दल ने सितंबर माह में प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि केंद्र द्वारा आपदा राशि जारी किए जाने वाले मापदंडों में बदलाव किया जाना चाहिए। बाद में मुख्य सचिव के पंत ने केंद्रीय दल के साथ बैठक में प्रदेश के सभी 12 जिलों में मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की और क्षति का आकलन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेब बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल व न्यूजीलैंड के किसानों बागवानों के लिए एक्सपोजर विजिट करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि न्यूजीलैंड हिमाचल में सेब की बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के इच्छुक हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल में बागवानी के विविध आयामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
4: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
5: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
4: जी डॉक्टर साहब,
5: सिर्फ इसे नहीं सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
6: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
8: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
8: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
7: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
8: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
7: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
8: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ऐतिहासिक रिज मैदान पर वृद्ध जनों की वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से हिमकेयर योजना के तहत इलाज में आ रही परेशानियों और लंबित देनदारियों को जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। धनीराम शांडिल ने कहा कि वृद्ध जनों का समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने युवा पीढ़ी से वृद्ध जनों के तिरस्कार और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बजाय उनके अनुभवों का फायदा उठाने का आह्वान किया। प्रदेश के 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड आज से शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्धारित ड्रेस कोड का उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन, पेशेवर पहचान, संस्थागत गरिमा को बढ़ावा देना और विद्यालयों में अधिक व्यवस्थित व पेशेवर शिक्षण वातावरण तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के साथ साथ शिक्षकों को पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा। आशीष कोहली ने कहा कि ड्रेस कोड सभी शिक्षकों व प्रधानाचार्यों सहित आउटसोर्स आधार पर कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय आवश्यकता, दिव्यांगता और गर्भावस्था की स्थिति में संस्थान के प्रमुख की अनुमति से निर्धारित ड्रेस कोड में आवश्यक छूट या परिवर्तन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2000

0: 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे सौर ऊर्जा क्रांति के बारे में। भारत की ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा की भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 50 लाख घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लग चुके हैं।
1: भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 12 साल पहले 2 गीगावाट, आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं।
0: राज्य बिजली बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत 8,568 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
2: जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, हिमाचल प्रदेश में इस योजना में बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है और लगातार लोग जो है इस प्रकार के संयंत्र लगा रहे हैं। जो आज तक का जो हमारे पास संख्या है प्रदेश में, वो 8,568 ऐसे रूफटॉप प्लांट लग चुके हैं, जिससे कि बहुत खुशी की बात है। इसमें हमारा जो है वो 29,439 किलोवाट जो है वो बिजली यहीं से प्राप्त हो रही है।
0: अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष पर हमीरपुर के एनजीओ भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को बधाई देते हुए सुनील बिट्टू ने कहा कि बुजुर्ग किसी भी समाज व परिवार का आधार होते हैं और उनके परिश्रम, त्याग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रोहडू में करीब 183 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। भाजपा ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, लोगों को गुमराह करने और भ्रम फैलाने के लगाए आरोप। प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल ने मुख्य सचिव से की भेंट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। शिमला में राज्य स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और प्रदेश के 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
4: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा विभाग में रोजगार कार्यालयों यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के माध्यम से बैचवार यानी बैचवाइज के आधार पर मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2 जॉब ट्रेनी के 18 पदों को भरा जाना है। बैचवार आधार यानी बैचवाइज बेसिस पर मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड 2 के 18 पदों को भरने के लिए मांग पत्र यानी रिक्विजिशंस श्रम आयुक्त सहनिदेशक रोजगार शिमला हिमाचल प्रदेश को भेज दिए गए हैं। अतः सभी संबंधितों से अनुरोध है कि ये योग्य उम्मीदवारों के नाम मोबाइल नंबर के साथ 15 अक्टूबर 2026 तक और जनजातीय क्षेत्रों से 20 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित परफॉर्मा के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशक

0: को भेजे। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है, सामान्य वर्ग के 9 पद, सामान्य वर्ग EWS का 1 पद, सामान्य वर्ग WFF का 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 5 पद और अनुसूचित जनजाति के 2 पद, यानी कुल 18 पदों को भरा जाना है। आवश्यक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से विज्ञान विषय में 10.2 उत्तीर्ण की हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंस या फिर BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेटरल में की हो। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धारा रे गीत।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। तो सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो अल्फाज में नहीं ढलते, बस दिल की धड़कनों में बस जाते हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है जिसे हम जीते हैं, महसूस करते हैं और कभी कभी अपनी जिंदगी में जिंदगी की तरह ही संजो लेते हैं।

0: गुलाम अली की आवाज़ में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं कुछ संदेश।
1: प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
1: प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और

0: मजबूत कदम आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये कलाम, तेरी यादों का दिया दिल में जलाए रखता हूँ। तेरी यादों का दिया दिल में जलाए रखता हूँ, रात कितनी भी गहरी हो उजाले रखता हूँ। और इश्क अगर खामोशी है तो उसकी आवाज़ भी है, इश्क अगर खामोशी है तो उसकी आवाज़ भी है, इश्क अगर दूरी है तो मिलने का अंदाज भी है।

0: हंसराज हंस की आवाज में अभी आपने सुना ये पंजाबी गीत। अब लेते हैं कुछ एक ब्रेक।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सर, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित
1: की आवाज,
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई।
0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने डालना है क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और सबरस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
5: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
6: We are very, very proud of the bravery and the courage.
7: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
8: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।

0: इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
1: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
2: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
3: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुक के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री आशा पारेख पर अभिनीत किए कुछ गीत। आशा पारेख 1960 और 1970 के दशक की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में से एक है। उन्हें बॉलीवुड की जुबली गर्ल और हिट गर्ल भी कहा जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शास्त्रीय संगीत नृत्य का शौक था। उन्होंने कम उम्र में ही नृत्य की बेहतरीन ट्रेनिंग ले ली थी। आशा पारेख ने फिल्म माँ, जो कि 1952 में बनी थी, उससे एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। तो आइए सुनते हैं आशा पारेख पर फिल्माया एक और गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओ, आज आप सुन रहे हैं अभिनेत्री आशा पारेख पर फिल्माए कुछ गीत। आशा पारेख का जो सफल दौर रहा वो 1959 से 1973 के बीच हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में भी शामिल रही। उन्होंने अपने करियर में 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। दिल देके देखो, जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, दो बदन, लव इन टोक्यो, उपकार, कटी पतंग आदि इनकी मुख्य फिल्में हैं जिनके लिए उनको फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्मों के बाद उन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा और निर्माण कंपनी आकृति के जरिए कई धारावाहिकों का निर्माण व निर्देशन भी किया। 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की वो पहली महिला अध्यक्ष भी रही। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से 1992 में सम्मानित किया गया। 2002 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 और 2022 में उन्हें दो बार प्रदान किया गया। उनकी आत्मकथा द हिट गर्ल वर्ष 2017 में रिलीज हुई थी। आइए सुनते हैं आशा पारेख पर फिल्माया एक और गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म तीसरी मंजिल से।

अभिनेत्री आशा पारेख पर फिल्माए कुछ गीत आपने सुने। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों का ये कार्यक्रम रंगे गजल।

दिल की वीरान गलियों में कोई सदा रहती है, खामोश लम्हों में भी एक दुआ रहती है, जिसे पाना मुकद्दर में नहीं होता अक्सर, उसी की याद उम्र भर साथ चला करती है। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, कुछ धुनें समय की सीमाओं को पार करके सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए, हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत एहसासों की दुनिया में, जहां तन्हाई भी एक कविता बन जाती है और इंतज़ार एक इबादत।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं, और कुछ अधूरे होकर भी हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन कुछ एहसास अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं जो बरसों बाद भी यादों के झरोखों से झांकते रहते हैं।

फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों का ये कार्यक्रम रंगे गजल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। गीता दत्त को अभी आप सुन रहे थे और अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
1: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
2: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
1: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थीं, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इन जूडो यामिनी मौर्य's कैंपेन एंडेड विद अ डिफीट इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम रेपेचार्ज एट द एशियन गेम्स। व्हाइल इंडियाज इनन गनबी तकलम्बाम फर्स्ट बीट नेपाल्स पूनम श्रेष्ठा बाय इपो टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। हाउएवर शी लॉस्ट बाय इपो टू नॉर्थ कोरिया सोंग हुई मून इन द क्वार्टर फाइनल्स। सोंग्स रीचिंग The final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inan Gambi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70 kg event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
1: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
3: इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट टू स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर। Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
1: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी, और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
3: इंडियाज कैंपेन

0: and Ujwala Ghugge had a tough start on the opening day of the Aichi Nagoya 2026 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
1: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
1: ये एशियाई खेल अब अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वही रहेंगी, भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रहिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी 7 में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टॉकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आइए सुनते हैं लक्ष्य फिल्म का ये गीत।

श्रीमती तुलीरेखा दत्त नजरुल गीत के इस कार्यक्रम का समापन झूम झूम झूमरा के साथ करेंगी, जो संगीत, नृत्य और जीवन छंद के प्रति हमारे अनायास प्रेम का बखान करता है। ये गीत कहता है कि नृत्य हर्षोल्लास की एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है जो लोगों

0: को प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता है।
1: श्रीमती तूली रेखा दत्ता कंक्लूड्स हर प्रेजेंटेशन ऑफ नजरुल गीती टुनाइट विद झूम झूम झूमरा नाचे के एलो, व्हिच डिपिक्ट्स आवर स्पोंटेनियस लव फॉर म्यूजिक, डांस एंड द जॉयफुल रिदम ऑफ लाइफ। It portrays dance as a universal expression of happiness that unites people with nature and the divine.

0: अभी आप बंगाल से प्रेम की भेंट स्वरूप नजरुल गीती सुन रहे थे। कलाकार थी श्रीमती तुली रेखा दत्तो। इसी के साथ नजरुल गीती की यह प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। कृपया अगली घोषणा हेतु हमारे साथ बने रहें।
1: यू आर लिसनिंग टू अ बुके ऑफ नजरुल गीती कैरिंग लव फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल एंड एज प्रेजेंटेड बाय श्रीमती तुली रेखा दत्ता। And with this, we end tonight's presentation of Nojrul Giti, which was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata. Please stand by for the next announcement.
2: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार की समृद्ध लोक संगीत परंपरा की एक मनभावन प्रस्तुति। बिहार की लोक परंपरा में जीवन के सुख दुख, प्रेम और विरह, भक्ति, पारिवारिक संबंध तथा सामाजिक सरोकार, इन सभी भावों की सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से होती रही है। आज की प्रस्तुति की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी। वंदना कुमारी आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। उन्होंने लोक गीत गायन की शिक्षा भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना से प्राप्त की। वहीं उन्होंने अपने गुरु मनोरंजन ओझा से लोक गायन की बारीकियों के साथ साथ लोक परंपराओं की गहन जानकारी प्राप्त की।
3: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू आवर रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुडे वी ब्रिंग यू द रिच एंड कलरफुल फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ बिहार, अ ट्रेडिशन that has lived through generations and continues to connect people with their roots. Bihar folk songs beautifully reflect the many shades of life, joy and sorrow, love and longing, devotion, family relationships and everyday social life. Our featured artist today is a well-known Bhojpuri folk singer, Vandana Kumari. Vandana Kumari is a B high grade artist of All India Radio. She received her training in folk singing at the Bharatiya Nritya Kala Mandir, Patna, where she learned the finer nuances of folk music and the traditions associated with it from her guru, Manoranjan Ojha.
2: आज की प्रस्तुति की शुरुआत वंदना कुमारी कर रही हैं एक

0: पारंपरिक देवी गीत से। देवी गीतों की बिहार की लोक परंपरा में अपनी विशिष्ट पहचान है। इसका एक लोकप्रिय रूप है पचरा, जिसमें देवी की महिमा, लोक विश्वास और भक्ति भावना का सुंदर समावेश दिखाई देता है। प्रस्तुत गीत में शीतला माता और मल्लाह के बीच संवाद के माध्यम से भक्ति और लोक आस्था को अभिव्यक्ति दी गई है। तो आइए सुनते हैं वंदना कुमारी के स्वर में यह पारंपरिक देवी गीत, जिसके बोल हैं एही पार शीतला मैया।
1: अवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ ट्रेडिशनल देवी गीत और अ डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू द गॉडेस। Devi Geet occupies a special place in Bihar's folk tradition. One of its popular form is known as Pachra, which brings together devotion, folk belief, and the glory of the goddess. In today's song, we hear a dialogue between Sheetala Mata and a boatman, woven into a beautiful expression of faith and devotion. So, let us listen to Vandana Kumari in this traditional Devi Geet titled, Yehi Paar Sheetala Maiya.

0: अब प्रस्तुत है शिव भजन, जिसके बोल हैं एहो शिव शंकर दानी। इस भजन में भक्त भगवान शिव से मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोक और धार्मिक संगीत परंपरा में मंगल कामना का विशेष महत्व रहा है। ईश्वर का स्मरण और मंगल की प्रार्थना किसी शुभ अवसर पर प्रस्तुति के आरंभ का अभिन्न हिस्सा रही है।
1: एंड नाउ अ शिव भजन। द सॉन्ग इज टाइटल्ड एहो शिव शंकर दानी। इट इज अ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा सीकिंग हिज ब्लेसिंग एंड विशिंग for peace and well-being in our folk and devotional traditions. Remembering the divine and seeking blessings has always been an important part of any auspicious occasion. So let us listen.

0: अब अगली प्रस्तुति है झूमर। प्रस्तुत झूमर में नायिका अपने पति से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मांग करती है। गीत में दाम्पत्य जीवन की आत्मीयता और सहज हास परिहास का सुंदर रंग दिखाई देता है। आइए सुनते हैं यह मनभावन झूमर, जिसके बोल हैं कुसुम रंग चुनरी।
1: Our next presentation is a lively jhumar. In this song, a woman playfully asks her husband for beautiful clothes and ornaments. It is a charming glimpse of married life, filling with affection, warmth and a touch of humor. Here is the jhumar titled Kusum Rang Chuneri.

0: अब प्रस्तुत होने वाले लोक भजन में भरत और कैकेयी के संवाद के माध्यम से भगवान श्री राम के वन गमन से जुड़ी परिस्थितियों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस संवाद में परिवार के भीतर उत्पन्न भावनाओं, पीड़ा और घटनाक्रम को लोक गायन की सहज शैली में अभिव्यक्त किया गया है। सुनते हैं यह लोक भजन जिसके बोल हैं राम कहां माई।
1: आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ फोक डिवोशनल सॉन्ग बेस्ड ऑन एन इमोशनल डायलॉग बिटवीन रिकॉलिंग द सर्कमस्टांसेस सरेंडिंग लॉर्ड Rama's exile through this simply yet powerful folk form. The song brings alive the emotions within the family, the pain, the conflict, and the sorrow of separation. Let us listen to this Lok Bhajan titled Ram Kahan Aayi.

0: बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाने वाला छठी संस्कार परिवार के लिए खुशी और उल्लास का अवसर होता है। प्रस्तुत गीत में ननद और परिवार की अन्य महिलाएं बच्चे की माँ से विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्रों की मांग करती है। अब सुनते हैं ये छठी गीत जिसके बोल हैं छठिया पूजेला ननदी।
1: वन सच ट्रेडिशन इज द छठी सेरेमनी ऑब्जर्व्ड ऑन द सिक्स्थ डे आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। It is a time of happiness and celebration for the entire family. In this song, the sister-in-law and the other women of the family playfully ask the new mother for a different kinds of clothes and ornaments. Now let us listen to this traditional chhathi geet titled Chhathiya Pujele Nandi.

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी का गायन। संगत कलाकारों में नाल पर अर्जुन कुमार चौधरी, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और बांसुरी पर मोहम्मद सलीम। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन आकाशवाणी पटना केंद्र में किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक फीचरिंग द रेनाउंड भोजपुरी फोक सिंगर वंदना कुमारी। द कंपेनियन म्यूजिशियन Where Arjun Kumar Chaudhary on Nal, Abhishek Pathak on Harmonium and Mohammad Saleem on Flute. The program was recorded at Akashwani Patna Center.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल

0: और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टनचावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 2400 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime